0: अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई,
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
0: जश्ने हैदराबाद.

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।

A very beautiful, fresh and energetic morning Hyderabad. I hope आपकी सुबह की चाय और आपके हौसले दोनों आज एकदम बुलंद होंगे. This is your host, your friend RJ Sharma Shams, and you are tuned into Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. Rainbow के साथ life है रंगीन. दोस्तों आज तारीख है 9 सितंबर and guess what? आज बॉलीवुड के अल्टीमेट खिलाड़ी अक्षय कुमार का जन्मदिन है. जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा की दुनिया में यदि किसी अभिनेता ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से ऊंचाई हासिल की है तो वो नाम है अक्षय कुमार. उन्हें लोग प्यार से खिलाड़ी कुमार, अक्षय पाजी और बॉलीवुड के फिटनेस आइकॉन के नाम से भी जानते हैं. उनकी फिल्म एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, ड्रामा हो और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में समान सफलता प्राप्त करने वाले अक्षय कुमार आज फिल्म इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद और सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, 50 की उम्र पार करके भी जो इंसान सुबह 4 बजे उठकर अपनी फिटनेस और काम से देश को इंस्पायर कर रहा है, वो हमें सिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली खेल आपके जज्बे का है. जी हाँ दोस्तों, सो टुडे लेट्स वेक अप द खिलाड़ी इनसाइडर्स. सुस्ती को कहिए बाय बाय और मुस्कुराकर दिन की शुरुआत कीजिए. चलिए सुनते हैं खिलाड़ी कुमार का ये बेहद खूबसूरत और एनर्जेटिक ट्रैक. ट्यून इनटू एफएम रेनबो 101.9.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 विद मी। दोस्तों आज है 9 सितंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल सुडोकू डे मना रही है। आपको मालूम है आज ही के दिन क्यों? क्योंकि सुडोकू का जो ग्रिड होता है वो 9 बाई 9 का होता है, यानी 9वां महीना और 9 तारीख। सुडोकू के इस खेल से हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस गेम में 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं जो शुरू में बिल्कुल बिखरे हुए और उलझे हुए नजर आते हैं। हमारी जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही लगती है ना, सिचुएशंस उलझ जाती है।

परेशानियां बिखर जाती है। लेकिन लेकिन सुडोकू हमें सिखाता है कि अगर आप सब्र रखे, थोड़ा सा लॉजिक लगाए और जल्दबाजी ना करें, तो हर नंबर अपनी सही जगह पर बैठ जाता है और पूरा ग्रिड मुकम्मल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ऐसी ही है दोस्तों। कोई भी उलझन ऐसी नहीं बनी जिसे सुलझाया ना जा सके। इसी सुडोकू डे के मौके पर आज का कुछ माइंड वर्कआउट करते हैं, क्यों अच्छा है ना? शुरू करते हैं। और आपके लिए आज की पहली पहली ये रही, वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना ही कम दिखाई देगा? जवाब सोचने के लिए मैं आपको दे रही हूँ कुछ वक्त। तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

वैसे सुडोकू तो दिमाग से सॉल्व हो जाता है दोस्तों, लेकिन लाइफ की डिसीजन वहाँ तो अक्सर दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ और। आप क्या चूज करते हैं, दिल की सुनना या दिमाग की? आपके लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है जब दिल और दिमाग दोनों ने अलग-अलग एडवाइस दी हो और फाइनली जीता कौन, दिल या दिमाग? कभी आपने नोटिस किया है हमारे अंदर दो लोग रहते हैं, एक दिल और एक दिमाग, और दोनों की कभी बनती नहीं है। सुबह अलार्म बजता है, दिमाग कहता है उठो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दिल दिल कहता है बस 5 मिनट और, दिमाग कल भी 5 मिनट बोला था ना, दिल कहता है तो आज भी बोल रहा हूँ ना। और यही कशमकश पूरे दिन चलती रहती है। शॉपिंग करने जाओ तो दिमाग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल कहता है यार दिमाग देखना कितना क्यूट है यार। फिर दिमाग कहता है चलो डाइट करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, लेकिन दिल कहता है एक समोसा खा लेते हैं ना, कल से पक्का डाइट पर रहूंगा। लेकिन वो कल कब आता है इसका जवाब ना दिमाग के पास है ना दिल के पास। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फाइट तब होती है जब बात रिलेशनशिप्स की हो। दिमाग मूव ऑन कहता है मूव ऑन करो इतना मत सोचो, लेकिन दिल दिल कहता है एक बार और मैसेज करते हैं ना देखते हैं। और कभी कभी दिमाग बिल्कुल सही होता है, लेकिन दिल कहता है मुझे पता है, फिर भी इस कशमकश के बीच हम देखेंगे और क्या सुनते हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं खूबसूरत सा गाना, उसके बाद मैं फिर आती हूँ।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों बात हो रही थी दिल और दिमाग के बीच की कशमकश की। तो दोस्तों हमने दिल पे कितने सारे गाने सुने और काफ़ी खूबसूरत गाने हैं। दिमाग हमें गलत डिसीजन से बचाता है और दिल हमें इंसान बनाए रखता है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा रूल है, करियर के डिसीजंस दिमाग से लेना लेकिन रिलेशनशिप्स दिल से निभाना।

वेलकम बैक दोस्तों. सो लिसनर, अब वक्त हो चला है नमस्ते हेलो आदाब का. आज मेरा सबसे पहला और सबसे गहरा आदाब उस माँ की कोख को है जिसने इस देश को एक शेरशाह दिया. आज 9 सितंबर है दोस्तों, और आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज उस वीर जवान को याद करने का दिन है जिसका नाम सुनते ही दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, ये दिल मांगे मोर. जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है कैप्टन विक्रम बत्रा की. 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे विक्रम बत्रा बचपन से ही बेहद जोशीले और देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना रखने वाले इंसान थे. पढ़ाई हो, खेल हो या एनसीसी, हर जगह उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया और आखिरकार भारतीय सेना को अपना जीवन समर्पित कर दिया. फिर आया 1999 का कारगिल युद्ध. कैप्टन बत्रा ने 0.5140 पर कब्जा करने के मिशन में अपनी टीम को आगे बढ़कर साथ दिया. चोटी पर तिरंगा लहराया गया और रेडियो पर उनकी आवाज गूंजी, ये दिल मांगे मोर. दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक जवान के उस जज्बे की आवाज थी जो कह रहा था एक जीत मिल गई है लेकिन अभी रुकना नहीं है. इसी बात पर दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत.

तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने पॉइंट 4875 की लड़ाई में कैप्टन बत्रा ने फिर आगे बढ़कर अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। इसी लड़ाई में वे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद हो गए। लेकिन कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारे बीच रहते हैं, उनकी कहानियों में, उनके साहस में और उन शब्दों में जो हमेशा याद रहते हैं, ये दिल मांगे मोर। आज उनके जन्मदिन पर हम कैप्टन विक्रम बत्रा को सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे दिल से उन्हें सलाम और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा बताती रहेगी कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी जज्बे को लेकर हम एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं।

कितना ही खूबसूरत सॉन्ग है दोस्तों। ये गाना सुनते ही ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे देश में सोल्जर्स हैं उन सबको हाथ जोड़कर नमन करना कि हमारी चैन सुकून की नींद जो हम लेते हैं हर एक दिन दोस्तों, उनको हम जितना भी नमन करें, जितना भी सैल्यूट करें, जितना भी उनको हम ग्रैटिट्यूड करें ना, वो कम है दोस्तों। क्योंकि वो खुद की जान की परवाह किए बिना ही वो देश पर अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। और ये जो गाना है ना, है संदेश से आते हैं, इसके जो गायकार हैं सोनू निगम जी, क्या आवाज़ है! ऐसा लगता है इस गाने को सुनकर रोम रोम खेल सा जाता है और देशभक्ति पूरे दिल में गूंजने लगती है दोस्तों। आपका क्या ख्याल है? आपको भी शायद ये गाना सुनकर हमारे सोल्जर्स याद आ गए होंगे। हमारे देश का हर एक इंसान इस गाने को बहुत पसंद करता है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज है 9 सितंबर और आज के दिन एक खास इंसान का भी जन्मदिन है। जब हम इस शानदार क्रिकेटर को याद कर रहे हैं तो सिर्फ उनके स्टैटिस्टिक्स याद मत कीजिए, जी हाँ दोस्तों, उनकी एनर्जी भी याद करते हैं, उनकी फाइटिंग स्पिरिट याद कीजिए और उस खिलाड़ी को याद कीजिए जो शायद अपने समय से आगे खेल रहा था। कभी-कभी दुनिया किसी टैलेंट को उसके सही समय पर पहचान नहीं पाती, लेकिन असली टैलेंट की खासियत यही होती है, वो वक्त गुजर जाने के बाद भी पुराना नहीं होता। बता रही हूँ ना, आप सोच रहे होंगे कौन है वो इंसान? जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है आबिद अली साहब। आपका खेल शायद उस समय का था, लेकिन आपकी स्पिरिट आज भी मॉडर्न है। तो हैदराबाद की इस मिट्टी से निकले इस शानदार ऑलराउंडर को दिल से सलाम। और याद रखिए, रिकॉर्ड्स कुछ सालों तक याद रहते हैं, लेकिन लीजेंड्स की कहानियाँ पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। और आबिद अली साहब, आपकी कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। आपको हम सब की तरफ से, आकाशवाणी रेनबो की तरफ से, आपको बर्थडे विश करते हैं। आपने क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं है, आपने अपने दौर से आगे जाकर क्रिकेट को जिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर और सुनते हैं हम एक प्यारा सा गाना।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा का वो डायलॉग था ना, ये दिल मांगे मोर। कभी सोचा है कि हमारे दिल को और क्या चाहिए, लालच या पैसा? नहीं दोस्तों, हमारे दिल को चाहिए थोड़ी और खुशियाँ, थोड़ा और वक्त अपनों के लिए, और थोड़ी और शिद्दत अपने काम के लिए। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, दुकान पर हो, या घर में की रसोई में हो, उसे इतनी मोहब्बत से कीजिए कि आपका दिल खुद पुकार उठे कि यार मजा आ गया, ये दिल मांगे मोर। वक्त है एक छोटे से ठहराव का, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

वेलकम बैक ब्यूटीफुल लिसनर्स। और अभी घड़ी में हो रहे हैं 11:47। आपकी दोस्त शमा शम्स चमक रही है सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है। कोई कहता है पैसा, कोई कहता है कामयाबी, लेकिन सबसे कीमती है वक्त और तवज्जो होती है। आज की इस डिजिटल भागदौड़ में हम सब इतने मशरूफ हो गए हैं कि पास बैठे इंसान को भी वक्त नहीं दे पाते। और इसी बात पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गौर फरमाइएगा, दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नज़दीकियों से होती है। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, जो यादों से नहीं वक्त देने से महकते हैं। क्या बात है जिस शायर

रखा है, ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने दिल की बात बहुत पहले ही समझ ली हो कि यार डिजिटल वर्ल्ड में लोग जो हैं एक दूसरे को वक्त कम देंगे फेस टू फेस, और ज़्यादातर वो लोग स्क्रीन पर होंगे। आज अगर किसी अपने से आपने काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है तो बिना किसी ईगो के एक फ़ोन घुमाइए और कह दीजिए, यार आज तुम याद आ रहे हो बहुत ज़्यादा, और यकीन मानिए उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। दोस्तों, अगर बनना ही है तो किसी के चेहरे की मुस्कान बनिए, किसी के रोने की वजह नहीं। सुनते रहिए FM रेनबो 101.9, जहां आपसे होगी ऐसी ही प्यारी बातें। तो सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

वेलकम बैक दोस्तों। और घड़ी में बज रहे 11:58 8 सेकेंड। और एक मैसेज आया है बहुत ही प्यारा सा, हुदा जी ने भेजा है बाबा नगर से। उन्होंने लिखा है, हाय आरजे जी। सर मैं हूँ आरजे शमा शम्स। उन्होंने लिखा है, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? और उन्होंने एक सॉन्ग की फरमाइश की है। उन्होंने कहा है कि तलाश मूवी से

मासूम चेहरा, वो गाने बजाने के लिए उन्होंने कहा है। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आप आपका ये जो फरमाइश है वो पूरा कर सके। और वो उन्होंने ये भी लिखा है कि ये तो अच्छा है कि दिल बस धड़कता है, बोलता तो कयामत आ जाती। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़कर। इसी तरह आप लोग मैसेज करते रहिए। और एक और मैसेज आया है सरवर अली जी का, उन्होंने गुड मॉर्निंग मैडम करके भेजा है। और एक रेडियो की पिक्चर उन्होंने भेजी है, बहुत ही खूबसूरत। पुराना सा रेडियो है पर है बहुत खूबसूरत। सरवर अली जी, आपका ये रेडियो का पिक्चर देख के पुराने दिन, बहुत जो पुराने दिन होते हैं वो दिन याद आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सुनते हैं इसी के साथ एक प्यारा सा गाना।

0: दोस्तों अभी सुनते हैं न्यूज़।
1: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गांवों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
1: भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति

वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 12 और 12:15 और 48 सेकेंड। दोस्तों आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर को बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं इंटरेस्टिंग। तो आज इतिहास का एक ऐसा पन्ना आपको बताती हूँ जो आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और आपके एक बहुत बड़ी सीख भी देगा आज ही के दिन 9 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 9 सितंबर के दिन 1776 को अमेरिकी संसद कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपने देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनी से बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स रखा था। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। जी हाँ दोस्तों, यूनिटी यानी एकता की। जब तक वो सिर्फ अलग अलग कॉलोनियों में थे, बिखरे हुए थे, तब तक वो कमजोर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यूनाइटेड शब्द को अपनी पहचान बनाया, वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए। जी हाँ दोस्तों, कॉलोनीज जो होती है वो बिखरी हुई होती है, लेकिन जहाँ पे ही यूनाइटेड का नाम आता है, यूनिटी का नाम आता है, तो एकता अपने आप ही झलक जाती है। ये इतिहास हमें सिखाता है कि चाहे कोई देश हो, हमारा समाज हो, हमारा परिवार हो या हमारी टीम हो, जब तक हम बिखरे रहते हैं ना, हम कमजोर होते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम एकजुट हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती। अपनी एकता की ताकत को पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, और सुनते रहिए रेनबो FM 101.9। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट RJ शमा शम्स। फिर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: वेलकम बैक लिसनर्स। दोस्तों, आज दोपहर की एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल बात करने जा रही हूँ आपसे। आज हम सब मोबाइल स्क्रीन से ऐसे चिपक गए हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बस स्क्रॉलिंग चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी हमें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है? साइंस कहती है कि दिन भर में सिर्फ एक घंटा फोन को खुद से दूर रखने से हमारा स्ट्रेस लेवल आधा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और मेंटल पीस मिलती है। हमें क्या चाहिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में? थोड़ा मेंटल पीस चाहिए ना, तो क्यों नहीं हम थोड़ा खुद को स्पेस दें अपने मोबाइल से। तो आज लंच करते वक्त फोन को साइड पे रखिए, अपने सामने बैठे इंसान से बात कीजिए या बस खिड़की के बाहर देखिए। अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि जिंदगी स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी स्क्रीन पर नहीं असल दुनिया में है। और हाँ ठीक, हम बात करेंगे उस पहेली के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन एक बार और सुनिए कि वो क्या चीज़ है जो जितना ज़्यादा होगा उतना कम दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपसे पहेली पूछ चुकी हूँ जिसको मैंने अभी फिर से रिवाइंड किया है आपको। तो दोस्तों आप सोचिए, अभी सुनते हैं फिलहाल एक प्यारा सा गाना।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back listeners. आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9 और मैं हूं आपकी आरजे शमा शम्स। दोस्तों, आज हम ना दूसरों से आगे निकलने की रेस में कहीं ना कहीं खुद से बेहतर बनने की दौड़ में पीछे रह गए हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों से आगे निकलने की रेस नहीं करनी है, खुद से बेहतर बनने की दौड़ में आगे रहिए। कभी नोटिस किया है, हमारी ज़िंदगी का आधा सुकून बस इसलिए चला जाता है क्योंकि हम बार बार खुद को किसी और से कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास मुझसे अच्छी जॉब है, उसकी लाइफ मुझसे बेटर है, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो मुझसे आगे निकल गया। लेकिन एक सवाल है, क्या कल वाला मैं आज वाले मैं से बेहतर है? बस असली कंपटीशन यहीं से शुरू होता है। ये जो कंपटीशन होता है ना, वो खुद से करना है, दूसरों से नहीं। अगर कल आप 10 मिनट पढ़ते थे तो आज 20 मिनट पढ़ लिया, आप जीत गए। जी हाँ दोस्तों, कल आपने 10 मिनट पढ़ा लेकिन आज 20 मिनट, तो आप जीत गए ना, आप कल से बेहतर हुए। कल आप किसी बात पर जल्दी हार मान गए लेकिन आज थोड़ा और ट्राई किया, आप जीत गए। कल आपने अपनी गलती को इग्नोर किया था और आज उसे एक्सेप्ट करके सुधारने की कोशिश की, आप जीत गए। जी हाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों में ही तो जीत है खुद की, क्योंकि ज़िंदगी का स्कोरबोर्ड किसी और के नाम से नहीं, आपकी अपनी ग्रोथ से बनता है। और याद रखिए, किसी और की स्पीड आपकी जर्नी का मेज़रमेंट नहीं है। किसी का चैप्टर 20 चल रहा है और आपका चैप्टर 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं। हो सकता है आपकी कहानी का बेस्ट चैप्टर अभी लिखा ही जाना बाकी है। तो आज से एक छोटी सी आदत बनाइए, रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं आज कल वाले खुद से थोड़ा बेहतर था? अगर जवाब हाँ है तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी रेस जीत रहे हैं। दूसरों को बीट करना अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन खुद को बेटर बनाना यही असली विक्ट्री है। और आज बस इतना याद रखिए, कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस मत खोइए, ग्रोथ से खुद को खूबसूरत बनाइए। तो इसी बात पर एक प्यारा सा नगमा सुनते हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों. कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतने रोज आते हैं कि एक दिन उनकी गैर मौजूदगी ही हमें उनकी कीमत समझाती है. जरा सोचिए, सुबह दरवाजा खोलते ही हमें अखबार मिल जाता है, दूध का पैकेट मिल जाता है, सड़क साफ मिलती है, लेकिन कभी हम उस हाथ को देखते हैं जिसने ये अखबार हमारे दरवाजे तक पहुंचाया, उस इंसान को जो हर सुबह दूध लेकर आता है, या उस रोड क्लीनर को जिसकी मेहनत की वजह से हम साफ सड़क पर चलते हैं. हमारे घर की मेड, ऑफिस का क्लीनर, कचरा उठाने वाला वर्कर, चाय वाला, सब्जी वाला, और वो सिक्योरिटी गार्ड जो रात भर जागता है ताकि हम चैन से सो सके. हम इन्हें रोज देखते हैं लेकिन शायद ही कभी नोटिस करते हैं. हमने उनके काम को उनकी पहचान बना दिया है. वो मेड है, वो गार्ड है, वो सफाई वाला है, लेकिन उसके पीछे एक इंसान भी है. उसका भी कोई नाम है, उसका भी एक घर है, उसकी भी थकान है, उसके भी सपने हैं. हम उनसे काम तो लेते हैं लेकिन कितनी बार उनकी मेहनत के लिए दिल से कहते हैं थैंक यू, शायद बहुत कम. तो अगली बार जब आपका पेपर वाला आए, दूध वाला दरवाजे पर खड़ा हो, कोई आपका कचरा उठाए, आपकी चाय बनाए, आपको ऑफिस साफ करे, या रात भर आपकी सिक्योरिटी करे, बस 2 सेकेंड रुकिए, उसकी तरफ देखिए, मुस्कुराइए और कहिए थैंक यू. क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन शायद उसके लिए ये एहसास है कि हाँ, मेरी मेहनत किसी ने देखी है, मैं इनविजिबल नहीं हूँ, और शायद दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए है. हमें हमेशा कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी किसी को नोटिस कर लेना भी एक बहुत बड़ा काम है होता है. एंड नाउ दिस इज वन इज फॉर एवरी अनहर्ड वॉइस. हर उस इंसान को सुनिए, देखिए, जो हम नोटिस तो करते हैं पर उनका नाम नहीं जानते. चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना.

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों जैसा कि फेस्टिव सीजन है तो और हमारे गणपति बप्पा, इस सीजन में गणपति बप्पा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। गणपति बप्पा का नाम आते ही ना दिल में एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है। गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी वो जो हमारी जिंदगी की मुश्किलें और रुकावटें दूर करे। लेकिन गणपति बप्पा की खूबसूरती सिर्फ इतनी नहीं है, बप्पा हमें एक बहुत प्यारी सी बात सिखाते हैं, नई शुरुआत से कभी डरना नहीं चाहिए। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। और बप्पा की एक और बात मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है, उनका बड़ा सा सर हमें हमें कहता है, बड़ा सोचो, बड़े

कान कहते हैं सबकी सुनो और छोटी आंखें कहती है फोकस रखो। तो आज अगर आपके सामने भी कोई चैलेंज है, बस एक बार दिल से कहिए गणपति बप्पा मौर्या, और खुद से कहिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा। तो बप्पा आपके घर में खुशियाँ, सुकून और पॉजिटिविटी लेकर आएंगे दोस्तों। तो मेरे साथ एक बार कहिए आप सब गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। दोस्तों इसी के साथ अभी स्टूडियो में हो कि घड़ी में बज चुका है 11:04 और आपका फेवरेट सेगमेंट हेलो हेलो रेनबो स्टार्ट हो चुका है। और आप मुझे लाइव फ़ोन कर सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 0402323 0030 और 0402323 4821 एंड 0402970471। इस नंबर पर आप कॉल करें। और मेरा सवाल आज का जो है वो है कि आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की, कोई भी ऐसा काम हो। तो मेरे सवाल ये है आज का, और चलिए सुनते हैं इसी के साथ एक प्यारा सा गाना।

0: चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला कॉल।
1: हेलो हेलो
0: हेलो रेनबो।
1: मैम, मैं रमणैया मैम।
0: हाँ, रमनैया जी बोलिए।
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून।
1: मैं क्या कहता, दिल दिल कैसा बोले तो वैसा सुनते मैं।
0: अच्छा, आप दिल के सुनते हैं, बहुत अच्छा है।
1: दिल दिल दिल में कैस क्या आया तो भी तो जरा सोच को ऐसा है, ये करे तो अच्छा रहता है, ये करे तो अच्छा नहीं करे तो बिल्कुल। फिर बात भी सोच
0: अच्छा
1: भी मैं सोच
0: अच्छा
1: को वो दिल में दिल का जो मैं फॉलो कर तुम।
0: अच्छा आप दिल की सुनते हैं और दिल की मतलब बात मानते हैं, बहुत अच्छा है रमनिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे
1: हैप्पी हैप्पी
0: जुड़कर।
1: हैप्पी विनायक, हैप्पी पेस्टिवल विनायक चतुर्थी।
0: जी, आपको भी, आपको भी बहुत ज्यादा।
1: आज 4 रोज है एडवांस भी, श्रद्धा को तुमना को भी, दो जना को भी हृदय पूर्वक नमस्कार है।
0: आपको भी नमस्कार, हम थैंक यू जुड़ने के लिए आपका। ठीक है,
1: थैंक
0: अब
1: यू।
0: हम लेते हैं दूसरा कॉलर, देखते हैं कौन है। हेलो रेनबो।
1: गुड आफ्टरनून मैडम, कैसे
0: गुड आफ्टरनून।
1: हैं मैडम?
0: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया हूँ
0: आपने क्वेश्चन सुना?
1: जी। सुना मैडम,
0: तो आप बताइए, आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की?
1: ये दोनों का सुनना पड़ता मैडम,
0: दोनों की सुनते हैं, बहुत अच्छा।
1: दोनों का सुनना। वैसा बोलते हैं ना, सबका सुनना अपना करना।
0: अच्छा, दोनों की सुनते हैं लेकिन करते अपनी है, बहुत अच्छा
1: अपने
0: ऐसा है,
1: करते हैं, अगर
0: बहुत
1: समय के
0: अच्छा।
1: हिसाब से वो दोनों का सुनना। कई को बोलते, दिमाग भी अपना, दिल भी अपना है ना मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसको भी नाराज करना समय के हिसाब से, कभी
0: जी।
1: उसका सुनना कभी इसके सुनना, पर
0: अच्छा
1: अभी
0: अच्छा
1: कैसा भी हो अपना पहले की बात हो ना,
0: अच्छा अच्छा
1: अपना
0: बहुत
1: अच्छे की बात
0: अच्छा
1: हो, अपना अच्छे की बात हो ना, अच्छे के लिए हो ना। तो
0: अच्छा
1: इसीलिए मैं तो, वन वे ट्रैफिक तो नहीं है मैडम, दो तरफ है अपना तो।
0: अच्छा इसका मतलब है अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखते हैं, दिल और दिमाग
1: बिल्कुल
0: दोनों
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है?
1: नरसिम्हा रेड्डी मैडम, प्रेम और
0: नरसिम्हा
1: विवेक से।
0: रेड्डी।
1: थैंक
0: ओके ओके,
1: यू मैडम।
0: थैंक यू आपको जुड़ने के लिए। चलिए लेते हैं एक और कॉलर को, देखते हैं वो कौन है। हेलो
1: हेलो
0: रेनबो।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: मैं रविंदर रविंदर राव बात कर रहा हूँ, सन सिटी से मैडम।
0: अच्छा, रविंद्र बात कर रहे हैं सन सिटी से। जी सर।

0: बताइए, आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की?
1: दोनों को कोऑर्डिनेशन करने करके काम करना पड़ता मैडम।
0: वेरी नाइस.
1: दिल और दिमाग को दोनों को कोऑर्डिनेशन करे तो कुछ काम कर सकते।
0: अच्छा.
1: अब मेरा दिल बोला फोन, FM रेनबो को दिल बोला फोन करो बोल के, दिमाग
0: हाँ.
1: भी कोऑर्डिनेशन हो गया, चलो फोन करो बोल के, आपसे बात करो बोल के।
0: अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है. दिल और दिमाग दोनों की
1: मैडम, मेरे को
0: सुनकर.
1: मेरा दिल कह रहा है कि बॉडीगार्ड पिक्चर से तेरी मेरी प्रेम कहानी गाना सुनने का दिल कर रहा मैडम।
0: अच्छा, आपका दिल कर रहा है कि आप बॉडीगार्ड मूवी का सॉन्ग सुने, तेरी मेरी. ओके, ठीक है सर, मैं
1: मैडम
0: कोशिश करती हूँ कि आपका जो पसंद.
1: मैडम कोशिश ना मैडम, बिल्कुल मेरे को सुनाओ ना,
0: अच्छा,
1: बहुत दिन
0: आपको
1: हो गया तो
0: सुनाऊँ,
1: गाना
0: आपका दिल
1: सुन
0: कर
1: के।
0: रहा है. ठीक है, मैं देखती हूँ सर, और आपकी ख्वाहिश मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ.
1: ओके मैडम, थैंक यू
0: ठीक
1: मैडम,
0: है,
1: ओके
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर.

0: वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही अच्छा गाना, धमाकेदार ओम शांति ओम सॉन्ग, और गाया है किशोर कुमार जी ने। देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक नए कॉलर, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो रेनबो
1: हेलो ओम सांझी, नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: जी,
1: मेरा
0: गुड
1: नाम सोहन
0: आफ्टरनून,
1: सेठी।
0: गुड आफ्टरनून,
1: हाँ
0: बोलिए
1: आप
0: आप।
1: तो,

0: गुड आफ्टरनून, मेरा नाम पोल शेट्टी मेहर बाबा जोगी से बात कर रहा हूँ मैडम।
1: अच्छा, बोलिए।
0: मन का बात हो दिल का बात बोलते मैडम, मैं पहले पागल आदमी मैडम,
1: हाँ,
0: पागल पागल का जैसे काम करते मैडम।
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: भी रेडियो, तीन चार रेडियो सुनो बोले तो तीन चार रेडियो दीवार को मार दिए मैडम, फोन भी सुनो बोले तो फोन भी मार दिए मैडम। पहले फोन बात करने को भी नहीं आता मैडम मेरे को, कोई
1: अच्छा
0: कुछ
1: अच्छा
0: बोले तो इन लोग गाली देते रहता मैडम। बाद में मैडम एफएम रेनबो चैनल में ना ये सुनो बोल को दिए मैडम, मेरा बीवी मेरा
1: अच्छा,
0: बच्चे लोग भी, ये सुनने के बाद मैडम मेरा 50% ठीक हो गया मैडम। पहले
1: वाह वाह,
0: रोते
1: क्या
0: रहते
1: बात है।
0: मैडम, आदमी को देख के हंसते रहते मैडम, क्या हंसते पागल का जैसे हंसते रहते बोल तो मेरे को बहुत गुस्सा आता मैडम। इन लोग जाके मारते रहते मैडम, ये अपना एफएम रेनबो सुनने के बाद मैडम
1: जी
0: मेरे को
1: जी
0: फोन करने के भी आया मैडम, आप लोगों से आज लोगों से भी बात करने को आई मैडम। पहले पागल पागल का जैसे काम करते मैडम,
1: जी
0: जब से मैं फोन हूँ मेरा फोन में आता मैडम, बड़े फोन में ये आपका चैनल आता मैडम,
1: जी
0: आपका
1: जी
0: चैनल लेना जेब में डाल के सुनते रहता मैडम।
1: बहुत
0: मैं
1: अच्छा, बहुत
0: छुट्टी
1: अच्छा।
0: सुनता सुबह से यात्रा दर्शनी, बाद में आपका काम 10 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से फिर 6 बजे तक, एक आदमी 6 बजे से फिर 7 बजे के भी फोन इन प्रोग्राम में भी फोन करने को आदत हो गई मैडम मेरे को।
1: अरे
0: ये
1: वाह,
0: सुनने के बाद बहुत अच्छे हो गए बोल के, डॉक्टर लोगों को भी दवाखाना को लेके जाते भी ठीक नहीं हुआ मैडम। आपका
1: अच्छा,
0: रेनबो एफएम रेनबो सुनने के बाद बहुत ठीक हो गई मैडम, 50% ठीक हो गई
1: अरे
0: मैडम,
1: वाह,
0: और
1: बहुत
0: फिफ्टी
1: अच्छा सर,
0: परसेंट
1: बहुत अच्छा।
0: और अभी कैसा बात कर मैडम, पहले बात करने को भी नहीं आता मैडम। आज भी
1: अच्छा
0: कुछ कोई कुछ बोले तो मैं गुस्सा से जाके इन लोग मारते मैडम,
1: अच्छा
0: ऐसा
1: चलिए, तो
0: सुनने के
1: इससे
0: बाद
1: तो ये पता चल रहा है कि आपको
0: दवाई भी
1: अब
0: नहीं खा
1: गुस्सा
0: मैडम।
1: कम आ रहा है एफएम सुनने से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जुड़कर। हम अब लेते हैं अपने
0: जी
1: नेक्स्ट
0: मैडम,
1: कॉलर को।
0: एक बात मैडम,
1: हाँ
0: रमणीय
1: हाँ
0: भैया जी को नमस्कार मैडम।
1: जी जी जी जी
0: अभी नरसिंह रेड्डी जी बात करें ना, सबको भी वो लेडी प्रभा कर रहा हूँ,
1: जी
0: सबको
1: जी जी
0: नमस्कार कर रहा हूँ मैडम। ठीक
1: ओके ओके सर, ओके,
0: है
1: थैंक यू।
0: मैडम, थैंक
1: ओके ओके
0: यू मैडम,
1: ओके,
0: थैंक यू
1: थैंक
0: मैडम।
1: यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बात कर रहे थे, अब हम लेते हैं दूसरे कॉलर को। हेलो रेनबो।
0: राधे राधे, सुख चैन से रहना है तो राधे राधे कहना है।
1: जी जी बिल्कुल सर, हाँ बताइए, आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की? क्वेश्चन तो आपने सुन लिया ना।
0: मैं तो सुनने आया हूँ, उससे पहले तो आपका शुभ का नाम, आपका शुभ का नाम जानना चाह
1: हाँ,
0: रहा हूँ।
1: मेरा नाम है आरजे शमा शम्स।
0: शमा शम्स, बहुत ही
1: जी
0: अच्छा है।
1: जी थैंक
0: और
1: यू।
0: एक बात कहता हूँ मैं, शमा शम्स जी,
1: जी,
0: अपने पुराणों में बड़े लोग ये कहे कि अपना जो फिजिकल बॉडी है ना,
1: जी,
0: वो जो पंचकोश में तैयार हुए से, पंचकोश से ठहरा हुआ सा है। कोश माने आप जानते हैं ना,
1: क्या?
0: पंच कोशों से ये फिजिकल बॉडी ठहरे हुए से, मतलब ये जिंदगी बने सो है। कोश
1: जी,
0: का मतलब जानते हैं ना आप, पंचकोश।
1: नहीं सर अभी। हाँ
0: कोश बोलो तो क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट का बॉक्स। ये जो फिजिकल बॉडी है एक बॉक्स के जैसा है, ये
1: ओके ओके सर।
0: पंचकोशों से ठहरा हुआ सा है। वो पंचकोश क्या है बोलो तो, अन्नमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आखिरी में जाके आप आनंद पाते हैं।
1: हाँ सर, ठीक है। आप ये
0: अच्छा,
1: बताइए कि आप
0: हमें
1: दिल की
0: बताते वही
1: सुनते
0: उसके
1: हैं या
0: वो
1: फिर
0: टॉपिक,
1: दिमाग की?
0: मैंने वही टॉपिक टॉपिक के लिए ये
1: हाँ सर,
0: आसरा लेना चाह रहा था
1: अच्छा,
0: उसकी, वो ये टॉपिक बोलने के वास्ते ये जरूरी है उसको बताने का
1: जी,
0: जो। तो फिर दुनिया के वास्ते जीना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता।
1: जी।
0: जब दिमाग इस्तेमाल करे तो क्या होता है, अपने में इंग्लिश का मनी, मनी जानते हैं ना आप, मनी
1: जी
0: पैसा,
1: जी जी
0: इंग्लिश का मनी बढ़ता और हिंदी का मनी छोटा हो जाता दिमाग का
1: हाँ
0: सुने तो। तो
1: हाँ
0: फिर
1: ओके।
0: उससे क्या होता कि चैन दूर हो जाता,
1: नहीं नहीं
0: बेचैनी।
1: मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आप दिल की सुन रहे हैं या दिमाग
0: अच्छा,
1: की? क्योंकि बहुत
0: दिमाग
1: सारे कॉलर लाइन पे हैं,
0: तो
1: तो
0: ठीक है ठीक है
1: आपको
0: ठीक है,
1: लेंगे फिर
0: हाँ
1: उनको लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम सबको टाइम देंगे।
0: ठीक है ठीक है। तो
1: ओके
0: फिर हम तो
1: जी
0: दिल
1: जी
0: का
1: जी
0: सुनेंगे,
1: अच्छा
0: दिल का
1: अच्छा
0: सुनने से क्या है, चैन मिलेगा,
1: हाँ,
0: चैन सुख सुख चैन से रहेंगे। अगर सबका चैन अपन चाहते हैं तो आप एक
1: जी,
0: सॉन्ग भी डालना पड़ेगा, वो सॉन्ग जो है ऑल इज वेल।
1: ओके ओके, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जरूर सुनाऊं आपको आपके फेवरेट सॉन्ग को। ठीक है, जुड़ने के
0: ठीक
1: लिए
0: है हरे
1: बहुत बहुत
0: कृष्ण।
1: शुक्रिया। चलिए दोस्तों, लेते हैं दूसरे कॉलर को। हेलो रेनबो।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी।

0: जी, वालेकुम अस्सलाम, कहिए।
1: मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल बात कर रहा हूँ।
0: हाँ इकबाल जी, बताइए, आपको, आपने हमारी क्वेश्चन को सुना? आप दिल
1: जी
0: के
1: हाँ,
0: सुनते हैं या दिमाग की?
1: क्योंकि ये इंसानों से अनेकता में एकता मोहब्बत रखना पड़ता, और जिंदगी जीने के लिए और समझ को इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग को समझ के दिमाग से काम करना पड़ता है, और सबको लेके चलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: सबका
0: बहुत अच्छी
1: साथ
0: बात
1: सबका
0: है।
1: विकास दिल और दिमाग से ही होता है, इतना ही कहना था मेरा।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। और आप दिमाग की, मतलब सबको जो सुनना है तो आप दिमाग को लेकर चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं हैदराबाद

0: उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग को समझ के दिमाग से काम करना पड़ता है और सबको लेके चलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: सबका साथ सबका विकास दिल और दिमाग से ही होता है, इतना ही कहना था मेरा।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और आप दिमाग की, मतलब सबको जो सुनना है तो आप दिमाग की, दिमाग को लेकर चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं हैदराबाद, दिल से हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, रेडियो चार मीनार से, रेडियो चार मीनार हल्के याकूतपुर से बात कर रहा हूँ।
1: ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। चलिए, लेते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर को। हेलो रेनबो, लगता है इनका कॉल कट चुका है, कोई बात नहीं, हम फिर से बात करते हैं। हेलो रेनबो।
2: हेलो एफएम रेनबो, और सुबह कॉन्शियस।
1: जी हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हम तो उस्मानगंज से, रमेश बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, उस्मानगंज से बात कर रहे हैं रमेश
2: जी।
1: जी रमेश जी, बोलिए, आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की?
2: अच्छा, ऑनलाइन में ना?
1: जी हाँ, आप ऑन एयर हैं, बताइए।
2: के रमेश उस्मानगंज
1: जी सर।
2: मैं तो नहीं, ना मनसु इतला, ना मनसु इतला जाए चेप्ते ना इतला जेस मतान ना ना मनसु को इतला ये दोस्ता जेस्ता ना अंदर दी विंटा ना नलगुर दी विंटा सबका सुनना अपना करना।
1: बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छी है।
2: పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా పిల్లలు చెప్పినా అన్ని వినండి, విన్న తర్వాత మీకు ఏదైతే మంచిగా అనిపిస్తుందో అది తీసుకోండి, చెడు వదిలిపెట్టేయండి. ఎవరికి మంచి చేయకున్నా పర్లే, కానీ చెడు మాత్రం ఎవరికి చేయొద్దు.
1: అచ్చా, యాక్చువల్లీ ఆప్ హిందీ మే బోల్ సక్తే హై సర్?
2: ఇది కొమ్మా సబ్కా సున్నా అప్నా కర్నా.
1: బహుత్ అచ్చా సర్, ఆప్కి సోచ్ బహుత్ అచ్చీ హై.
2: ఔర్ క్యా బోలు తో, సున్న జో అచ్చే కామ్ హై బరోబర్ వో అచ్చా కామ్ బరోబర్ కర్ లేనా, బురా కామ్ చోడ్ దేనా.
1: जी जी,
2: किसी को बुरा नहीं, अच्छा नहीं करे परवाह नहीं, किसी को बुरा मत करो.
1: अच्छा ठीक है, बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी.
2: अच्छा कर सकते तो करो, अच्छी बात कर सकते करो, नहीं करे चुप बैठ जाओ, मतलब किसी को बुरा मत करो.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी. अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी आप मत ही करो,
2: बुरा मत करो. आप अच्छा नहीं करे परवाह नहीं, कोई बात नहीं, बुरा मत करो किसी को.
1: अच्छा, बहुत अच्छी सोच है. चलिए, बहुत अच्छा लगा जुड़कर आप के साथ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़ना चाहते हैं.
2: आपका नाम क्या है?
1: जी, मैं आरजे शमा शम्स बोल रही हूँ.
2: पहली बार सुन रहा हूँ आप मुझे.
1: जी जी सर, ये मेरा फर्स्ट शो है और फिर आप मुझे सुनते रहेंगे.
2: बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप.
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया. ठीक है, लेते हैं आप दूसरे कॉलर को. हेलो रेनबो, लगता है उनका फोन अभी नहीं लग पा रहा है. हम फिर से कोशिश करेंगे कि उनके कॉल को हम ले सकें. तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत सारे जो कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं वो ज़्यादातर दिल दिमाग दोनों की सुन रहे हैं, या फिर कोई दिल की सुन रहे हैं, या फिर पूरे समाज को साथ लेकर वो दिमाग को लेकर चल रहे हैं. देखिए, हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो रेनबो.
3: हेलो रेनबो, अस्सलाम वालेकुम. आरजे शमा शम्स जी.
1: जी हाँ जी हाँ, बोलिए. मैं आरजे शमा शम्स बोल रही हूँ.
3: जी, आपको सलाम है मेरा प्यार भरा.
1: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
3: सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम आदाब. अल्लाह से दिल से दुआ करता हूँ मैं, आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे हमेशा.
1: जी बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआ देने के लिए. सर, आपने हमारे क्वेश्चन को सुना, दिल और दिमाग से आप किसकी सुनते हैं?
3: जी जी जी शमा जी, मैं कंडीशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से काम करता हूँ.
1: जी,
3: देखिए, कभी कहते हैं दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, क्या क्या है. कभी जज्बात में आदमी दिल का सुन के भी कभी खसारे में पड़ जाता है. कभी कहते हैं कि अरे क्या करूं, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा. आपको तो ऐसा है कि मैं हालात के, कंडीशन के हिसाब से कभी दिल और दिमाग दोनों का भी सुनता हूँ. कभी दिल कुछ जज्बा, कभी दिल कुछ मनमानी भी करता है तो दिमाग से काम लेना जरूरी समझता हूँ. और कभी दिल में, ये दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दिल से, अगर दिल जो कर रहा है तो कह रहा है तो कभी दिल की भी मान के देखता हूँ. हालात के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ.
1: अच्छा अच्छा, ठीक है. इसका मतलब आप हालात को लेकर चलते हैं.
3: बहनों को सलाम है, मुमताज बाजी को भी, मजनी बाजी, अफजल साहब को, आपका भी शुक्रिया.

0: वक्त दिया
1: जी जी
0: आपको।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये थे हमारे बहुत कॉलर, ये हमारे कॉलर थे और ये हमसे बहुत अच्छे से बात करना चाह रहे थे, और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो रेनबो।
0: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम जी। श्रीनिवास राव मलकपेट से बात कर रहा हूँ
1: जी
0: मैं
1: श्रीनिवास राव जी, बताइए, आपको भी
0: तो।
1: बहुत बहुत गुड आफ्टरनून
0: आपका टॉपिक अच्छा है। तो
1: जी।
0: हम जैसा जो वाक्या चलते रहता है, जो डिस्कशन चलते रहता है, उसके हिसाब से बात करते हैं।
1: जी
0: दिल से बात करना है, दिल से बात करेंगे, यानी दिमाग की यूज करने का है तो दिमाग यूज करेंगे।
1: बहुत अच्छा, मतलब कि जहां जो सिचुएशन उस हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं।
0: यस, वो तो कभी दोनों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए,
1: अच्छा,
0: इससे बहुत ही लड़ाई पंचायती हो जाती है। तो
1: जी,
0: इसीलिए हम क्या करते हैं, पहला देखते हैं काफी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है कि दोस्त क्या बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर
1: जी
0: दिमाग लगाना चाहिए तो उसको दिमाग लगा के उसको जैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा
0: यानी
1: ठीक
0: दिल से
1: है।
0: बात करने का, दोस्त अपने हैं, अपन कुछ भी बोले तो चल जाता, तो उसके हिसाब से अपन दिल से बात कर लेते।
1: बहुत अच्छा, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच माँ,
1: ठीक
0: थैंक
1: है,
0: यू वेरी मच
1: ओके ओके,
0: माँ,
1: चलिए,
0: थैंक यू माता।
1: बहुत अच्छा लगा इनसे जुड़कर, इनसे बात कर कर, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालते हैं। चलिए दोस्तों, इसी बीच छोटा सा संदेश सुनते हैं और फिर लेते हैं, सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, वो भी एक हमारे लिए एक कॉलर ने उनसे हमसे कहा था कि वो हमसे ये गाना सुनना चाहते हैं, तो हम उनको बिना लेट किए सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे से संदेश के बाद। हेलो लिसनर्स, आर यू समवन हु लव्स गेटिंग लॉस्ट इन द पेजेस ऑफ अ गुड बुक एंड विशेस अदर्स कुड एक्सपीरियंस द सेम जॉय दैट यू फाउंड बिटवीन दोज पेजेस? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So, dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book. Be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.

0: तुरंत अस्पताल ले जाना है।
1: जी.
0: मन ये कह रहा है कि कोई दूर अस्पताल है वहां चलेंगे, लेकिन हमारे मस्तिष्क का उपयोग करते हुए हमको ये तय करना है कि सबसे समीप में कौन सा अस्पताल है और वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं क्या, इसका विचार करके तुरंत उस समीप वाले अस्पताल में ले जाना है।
1: जी,
0: तो तात्पर्य क्या है कि हमारे मस्तिष्क का हमको उपयोग इस समय करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मान लीजिए एक समय आपको नौकरी के लिए जो जगह से नियुक्ति के पत्र आ जाते हैं, आपको ये तय करना है कि मैं कौन से जगह पर ज्वाइन हो जाऊं।
1: जी जी.
0: तो उस समय भी आपको आपके मस्तिष्क का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। आपको ये विचार करना पड़ेगा कि मान लीजिए एक जगह पर मैं जाता हूं तो वहां पर मेरी पदोन्नति जल्दी हो सकती है क्या, वेतन कितना है वगैरह। और
1: जी,
0: वैसे ही हमारे मस्तिष्क का उपयोग करके हमको दो जगह पर हमको नियुक्ति के पत्र आते हैं तो कहाँ जाना है ये तय करना आवश्यक है।
1: जी जी
0: मैं समझता हूँ मैंने अपनी बात को ठीक ढंग से रखा।
1: बहुत बहुत अच्छे से आपने रखा है और बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आपने बहुत अच्छा बताया और ऐसे ही आप जैसे आप मुझसे जुड़ रहे हैं वैसे बहुत सारे लिसनर्स लाइन पे हैं, उनको भी लेते हैं, हमारे कॉलर हैं, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी
0: मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे समय दिया।
1: जी जी जी जी जी बहुत शुक्रिया।
2: तो ये बात,
1: हेलो रेनबो।
3: अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: जी जी जी कहिए।
3: मैं सोशल वर्कर बाबा नगर से बात कर रही हूँ। दिमाग लड़ाना पड़ता मेरे को, रात दिन 24 घंटे भी बसने होते।
1: अच्छा अच्छा।
3: दिमाग
1: आप...
3: भी आधा लड़ाना पड़ता।
1: अच्छा,
3: तो जब मैं सब कर सकती हूँ मदद।
1: ये भी अच्छा है कि आपको हर समय आप अपने दिमाग की जरूरत।
3: मतलब 10 बजे से सुन रही हूँ मगर आप अभी 1:30 बजे सुनी मैं आपको।
1: जी जी चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने सुना सही।
3: मोस्ट वेलकम मैडम।
1: अरे अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए आप मतलब दिमाग के जहाँ भी मतलब आपको होता है आप ज्यादातर दिमाग को ही लगाती हैं।
3: जी जी
1: जी।
3: और कामा बनते भी।
1: अच्छा आप कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैं हाफिज बाबा नगर से सोशल वर्कर बात।
1: अच्छा अच्छा सोशल वर्कर हैं आप, बहुत अच्छा।
3: जी, जी.
1: तो जिस फील्ड में आप हैं तो आपको तो दिमाग लगाने की जरूरत है, बिल्कुल है। चलिए जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ बोलिए।
3: दिल से दुआ देते लोग हम बोली।
1: बिल्कुल जैसा आप काम कर रही हैं उस हिसाब से तो लोग आपको दिल से दुआ देंगे ही।
3: अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी जी जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
3: पुराने लिसनर हैं हम।
1: अच्छा आप पुराने लिसनर्स हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के ये जानकर। चलिए जी जी जी आपको भी। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आपने देखा बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमसे जुड़ करके हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और अपने बारे में बताना भी चाहते हैं कि वो दिल की सुनते हैं या दिमाग की। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो रेनबो।
4: हेलो मैडम।
1: जी हाँ हेलो बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं वेंकटेश राव बोल रहा हूँ।
1: जी वेंकटेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं सिकंदराबाद मारेकपल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी जी बोलिए, आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की?
4: मैं हमेशा दिमाग का सुनता हूँ, ऑल्दो इमोशनल आदमी हूँ बट हमेशा दिमाग का सुनता हूँ क्योंकि मेरे सोच विचार में।
1: जी जी
4: जब दिमाग से सुनते हैं, दिमाग 5-6 तरीके से और 5-6 ऑप्शंस एवैल्यूएशन करता है, यानी कि उस एवैल्यूएशन में दिल का सुनना भी एक एवैल्यूएशन है, एक प्रोसेस है। यानी 5-6 ऑप्शंस में से दिमाग सोचता है कि हाँ अभी दिल की ज्यादा सुनना चाहिए, तो वो आपको बताता है कि जाओ दिल की बात सुनो और आगे बढ़ो। सो दिल से सुनना एक ही ऑप्शन है, जब वो ओवरटेक करता है कई जगह कई बार हमें।
1: जी जी।
4: तब बाकी ऑप्शन बंद हो जाते हैं और हो सकता है कि हमारी वो रास्ता कई बार गलत हो सकता है।
1: जी जी जी।
4: तो हर ऑप्शन में मैं समझता हूँ कि दिल का जब बताता है कि हाँ इसकी बात ज्यादा मान लो, पर पहले उसको साइड में रखो, दिमाग का सुनो।
1: जी जी।
4: और एवेल्युएट करो और उसके बाद हाँ सही है अभी दिल की बात सुनने की जरूरत है, लेट मी गो विद द दिल का ऑप्शन।
1: चलिए
4: मेरे हिसाब से दिमाग इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर और आपने बहुत अच्छा बताया कि आपको दिमाग हर जगह मतलब लगाना पड़ता है।

होता है, और जहाँ पे जैसी सिचुएशन है वैसे आप हैंडल करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे लिसनर्स जुड़ रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं, इसी पर हम लेते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमारे दिल के हाल को बताएगा।

तो दोस्तों, इस सफ़र को समेटते हुए जाते जाते अल्लामा इकबाल साहब की ये बेहद खूबसूरत और सबके दिल को छू लेने वाली अमर पंक्तियाँ आपके हौसले के नाम छोड़ कर जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, खुद को आज की किसी छोटी सी परेशानी में मत समेटिए। आपके पंखों में बहुत लंबी उड़ान बाकी है। जिंदगी की हर पहेली को मुस्कुराकर सुलझाइए, अपनों को वक्त दीजिए और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ, आपकी आरजे शमा शम्स। लेकिन एफएम रेनबो पर सुरों का सफ़र थमा नहीं है। मेरे ठीक बाद शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा तेलुगु शो जश्न हैदराबाद, और मेरे साथ यहाँ पर हैं राजेश। जी हाँ दोस्तों, तो रेडियो को इसी फ्रीक्वेंसी पर सेट रखिएगा, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली सुरीला जश्न। तब तक के लिए नमस्कार हैदराबाद, और अपना ख्याल रखिएगा। और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

तो दोस्तों, जाते जाते उस पहेली का आंसर देना चाहती हूँ जो मैंने आपसे पूछा था कि वो क्या चीज़ है जो आपके पास जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम दिखाई देगा। जी दोस्तों, उसका आंसर है अंधेरा, डार्कनेस। जी, इसलिए मैंने आपको उस वक्त उस पहेली का आंसर नहीं दिया था, जाते जाते देकर जा रही हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड इन 101.9 FM रेनबो, क्योंकि रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

0: FM Rainbow 101.9.
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई.
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
1: इट्स नॉट जस्ट फूड,
2: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
1: जश्न ए हैदराबाद.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के

गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते, बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

आदाब अर्ज़ सामाइन, अभी आप सवेरा से तेलुगु प्रोग्राम सुन रहे थे रिमझिम हैदराबाद। इस वक्त रात के 9:30 और 32 सेकेंड हुए हैं। अब आगाज होता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

जिंदगी के अंधेरे को दूर कर दिया। ठीक वैसे ही हम अपनी जिंदगी के अंधेरे को रोशनी दे सकते हैं। जिंदगी का सिलसिला सही है तो फिर इसे सुधरने में देर नहीं लगती। दरअसल तीन लफ्जों के इस जुमले में जिंदगी का पूरा फलसफा है, यानी मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग अपने गर्दिश के दिनों में सभी अपनों को अच्छी तरह से परख चुके होते हैं। इन्हें सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा होता है। बगैर किसी के सहारे वो भले ही धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं, मगर अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं दोस्तों चार दिन भी।

0: जानूं। तकरीर आज आप सुनेंगे राजेंद्र सिंह बेदी पर, उनकी फ़न और शख्सियत के बारे में। पेशकश है सैयद अजीमुद्दीन की।
1: बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। अपने एक मजमून में अपनी पैदाइश का जिक्र उन्होंने नहायत ही ज़रीफ़ाना अंदाज से किया है। लिखते हैं, टैगोर कहते हैं कि दुनिया में हर रोज़ जो इतने इंसान पैदा हो जाते हैं, इस बात का सबूत है कि खुदा अभी इंसान बनाने से नहीं थका। खुदा की कितनी सितम ज़रीफ़ी है, चूँकि वो थक नहीं सकता इसलिए इंसान बनाता जाता है। बेकार मबाश कुछ क्या कर, पाजामा उधेड़ कर सिया कर। चुनाचे खुदा के पाजामे का आखिरी टांका यानि मैं 1 सितंबर 1915 को सवेरे को लाहौर में 3:47 पर सिर्फ महाकवि टैगोर को सबूत मुहैया करने के लिए पैदा हो गया। बेदी की माँ सेवा देवी हिंदू ब्राह्मण खानदान से थी और बाप बाबा हीरा सिंह खत्री सिख थे। लफ्ज बेदी या वेदी वेद से आया है। वो खत्री जो वेद को अपना ग्रंथ मानते हैं बेदी कहलाते हैं। जैसा कि बेदी ने खुद बताया है, उनकी माताजी उनके पिताजी के साथ अपने घर से फरार होकर आई थी और दोनों ने लाहौर के एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। बाप पोस्ट ऑफिस में नौकर थे, घर का रहन सहन हिंदुआना था और सिक्खी भी। गीता और जप जी साहब दोनों का पाठ होता। जैसा कि बेदी के भाई हरबंस सिंह बयान करते हैं, इस्लामिक कल्चर से भी दूर नहीं रहे। वालिद साहब सूफियाना कलाम के दिलदादा थे और गौर पर्व और जन्माष्टमी के त्यौहार मनाने जाते तो वालिद साहब ईद के मेलों में भी बच्चों को ले जाते। किसी मजहब या अकीदे से अनाद नहीं था। इस माहौल का बेदी पर गहरा असर हुआ। हर दुख दर्द को शिद्दत से महसूस करना, अपने किरदारों में अपने आप को समो देना और मिजाह की चाशनी माँ बाप का विरसा थी। बेदी की माँ उर्दू हिंदी और थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी भी जानती थी। बेदी के कहने के मुताबिक पहली कहानियाँ जो उन्होंने बचपन में सुनी जिन और परी की दास्तानें नहीं थीं बल्कि महात्म थे, जो गीता के हरिध्याय के बाद होते हैं और जो बड़ी श्रद्धा के साथ बेदी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर माँ के पास बैठकर सुना करते थे। 5 बरस की उम्र में बेदी रामायण और महाभारत की कहानियों और किरदारों से वाकिफ हो चुके थे। माँ की बीमारी की वजह से बेदी के पिताजी एक रोज़ माँ की बीमारी की वजह से बेदी के पिताजी एक पैसा रोज़ किराए पर कोई ना कोई किताब बाज़ार से ले आते थे और पढ़कर माँ को सुनाया करते। बेदी भी पास बैठे सुना करते। इस तरह स्कूल की उम्र के साथ टाड के राजस्थान और शरलॉक होम्स के कारनामों से वाकिफ हो चुके थे। माँ को भी अदबी ज़ौक़ था। गुरु साहिबान की ज़िंदगी और उनसे मुताल्लुक साखियों के अलावा रामायण महाभारत अलिफ लैला वली बुजुर्गों के किस्से सब याद थे। घर में किताबें और रिसाले अक्सर आते। चचा संपूरन सिंह लाहौर में एक प्रेस के मैनेजर थे जिससे हर किस्म के नावल और किस्से छपते थे। घर में किताबों का अंबार लगा रहता, या तो मशहूर अंग्रेज़ी नावलों के तर्जुमे के वर्ख गिरदानी होती या फिर खूनी ख्वाब एक रात में 20 खून और चंद्रकांता का पाठ होता। बेदी के चचा ने जब स्टीम प्रेस खरीद लिया तो उसके साथ 5-6 हज़ार किताबें भी आईं। किताब के कीड़े की तरह बेदी इन किताबों को चाटते रहते। हरबंस सिंह लिखते हैं कि सर्दियों में रात गए चूल्हे के इर्द गिर्द बैठे वालिद साहब किसी न किसी किताब या रिसाले से कुछ न कुछ पढ़कर सुनाते और सब घुटनों में सर दिए सुनते रहते। कहानी के किरदारों के दुख और खुशी को बुरी तरह महसूस करते, रोते और हंसते। बेदी कॉलेज में इंटरमीडिएट तक ही पहुँचे थे कि वालिद का तिप दिख की बीमारी में इंतकाल हो गया। माँ की बीमारी के दौरान बहुत खिदमत की, उनकी टट्टी पेशाब तक साफ करते। माँ बाप से बहुत मोहब्बत थी, उनकी दिली दुआएं हासिल की। माँ के मरने के 4-5 साल बाद ही वालिद का इंतकाल हो गया। आखिरी उम्र में वालिद साहब टोबा टेक सिंह में मुतायुन थे। उन्हें इल्म हो गया था कि अब वो दुनिया से जाने वाले हैं। छुट्टी लेकर लाहौर आ गए और अपनी जान अपनी होनहार सुपुत की बाहों में दे दी। इनकी शिफा के लिए मिट्टी में लेट लेट कर दुआएं मांगते रहे। इंटरमीडिएट का इम्तिहान बेदी ने गालिबन 1933-1934 में पास किया। इन दिनों बेरोजगारी बहुत थी। आए दिन ग्रेजुएटों के रेलगाड़ी के सामने कूद कर खुदकशी करने की खबरें छपती। पोस्ट ऑफिस में कुछ क्लर्कों की आसामियां

सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनाते हैं प्रोग्राम मत सहल हमें।

निकली तो वालिद के कहने पर इम्तिहान में बैठ गए और कामयाब हुए। मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन वालिद के कहने पर क्लर्क की कर ली। बेदी की अदबी जिंदगी का आगाज भी कॉलेज की जिंदगी यानी 1931 से लगभग 17-18 साल की उम्र में होता है। इस जमाने में उन्होंने अंग्रेजी में नज़में लिखी, उर्दू और पंजाबी में अफसाने और मजामीन लिखे। एक रिसाला सारंग लाहौर से निकलता था जो पंजाबी जबान और उर्दू हरूफ में छपता था। रिसाले की माली हालत ख़राब थी। बेदी ने बिला मुआवजा इसकी एडिटरी का काम संभाल लिया। संभाला क्या, सारा रिसाला खुद ही लिखना शुरू कर दिया। हर किस्म के मजमून, फारसी गज़लों और रुबाइयों के पंजाबी तर्जुमे, कहानियाँ खुद ही लिख लिख कर मुख्तलिफ नामों से छापते रहे। जब तक ये रिसाला चला, फ़ायदा ये हुआ कि हर किस्म का अलम गलम लिटरेचर पढ़ने की जैसी आदत थी, वैसे ही अब हर मजमून पर कलम चलाने की मशक हो गई। तालिब इल्म के ज़माने में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा करते थे। लिखने में बहुत मेहनत करते। क्लर्की के ज़माने में देर गए रात तक पढ़ते और लिखते। लाइब्रेरी की किताबें लाते और दिन भर थके होने के बावजूद रात के 2-2 बजे तक पढ़ने और लिखने में मसरूफ़ रहते। पहले अखबार पारस लाहौर के हफ्ता रोज़ा एडिशन में आपकी कहानियाँ छपती जो रूमानी अंदाज में लिखी थीं। बाद में अदबी दुनिया लाहौर में अफसाने छपने लगे। बहुत ख्वाहिश थी कि रिसाला हुमायूं लाहौर में कोई अफसाना छपे, मगर एडिटर को बेदी साहब से शदीद कोई कद थी। जब गर्म कोट लिखा तो हुमायूं को भी पहले भेजा मगर लौटा दिया गया। वजह दरियाफ्त की तो जवाब मिला कि इमला और ज़बान की खामियां हैं। मामूली किस्म की गलतियां थीं जिनकी इसलाह हो सकती थी, मगर मुदीर साहब कहानी के फ़नी महासिन और वाक़ियात निगारी से ज़रूर बेबहरा थे। बेदी साहब को बहुत रंज हुआ। उनका हौसला तब बुलंद हुआ जब सादत हसन मंटू ने, जो अभी बेदी से मुतारफ़ नहीं हुए थे, मुसविर बम्बई में अपने बम्बई में आपके अफसानों का जायज़ा लेना शुरू किया और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और गर्म कोट को रूसी अदब की कहानियों के बराबर जगह दी। डाक खाने में बेदी को बहुत काम करना पड़ता और हर तरह का काम करना पड़ता क्योंकि ड्यूटी के अवकात मुकर्रर न थे। कई बार 12-17-18 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती। यही ज़माना बेदी की संजीदा अफसाना निगारी का ज़माना भी है। वो रूमानी कहानियों और अलम गलम मजामीन और तराजिम के दौर से बाहर निकल आए थे और ज़िंदगी के अहम तजुर्बात पर कहानियों की तामीर करने लगे थे। यही वो कहानियाँ हैं जो 1936 ईस्वी में उनके पहले मजमुआ दाना व दाम की जीनत बनी और जब 1941 ईस्वी में उनका दूसरा मजमुआ ग्रहण शाये हुआ तो वो उर्दू के मुस्तनद अफसाना निगार करार दिए जा चुके थे। पहले मजमुए में 14 और दूसरे मजमुए में 15 अफसाने हैं और सिवाय 2-3 अफसानों के सब बेदी की बेहतरीन निगारिशात में शुमार होते हैं। बेदी का हुस्न इंतखाब इससे ज़ाहिर होता है कि अपनी मुबतदियाना रोमानी तहरीरों से उन्होंने एक भी चीज़ उन मजमुओं में शामिल नहीं की। अपने आला अदबी और फ़न्नी मियार के सबब ये दोनों किताबें खारेइन के अदबी हाफिज़े में एक बुलंद शायर के दीवान की मानिंद महफूज हो गई हैं। खारेइन इन मजमुओं के दूसरे नाम या उनमें शामिल अफसानों की दूसरी तरतीब को किसी भी तरह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मजमुओं में शाये होने से पेशतर ये अफसाने रिसालों में छपते रहे और लोग उन्हें पढ़कर बेदी के गिरविदा होते रहे, लेकिन बेदी को हमेशा यह शक रहा कि वो अच्छे अफसाना नवेश नहीं। हरबंस सिंह लिखते हैं, यही सोचते कि मेरा अफसाना फलां के मुकाबले में कमज़ोर है, जो लिखते बार बार सुनाते और सलाह व मशवरा लेते। उन दिनों के ख़ास दोस्त जनाब उपेंद्र नाथ अश की राय और हल्के अरबाब ज़ोख लाहौर के इजलास की तनकीद आपको बहुत मुतासिर करती। सब अहबाब बहुत क़दर करते थे, मगर बेदी साहब तो मामूली समझ और कम इल्मियत रखने वालों की राय को भी बहुत अहमियत देते थे। जब दाना व दाम छपी और उसकी बहुत तारीफ़ हुई और ख़ासकर जनाब आल अहमद सुरूर साहब ने बहुत सराहा तो नहायत ही मसरूर और शुक्रगुजार हुए। ये भी कहा जाता है कि डाकखाने में जब बेदी की ड्यूटी मनी ऑर्डर काउंटर पर लगी तो उन्हें जो भी वक्फा मिलता उसमें वो कागज़ के छोटे छोटे पुर्जों पर कहानियाँ लिखने बैठ जाते। उनकी शोहरा आफाक कहानी 10 मिनट बारिश में और हम दोष शायद इसी तरह लिखी गई। इस ज़माने में उनकी अदबी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि
لاہور کے مقتدر ادبی رسالے ادب لطیف کے مدیر

एजाजी बना दिए गए। इससे बेदी को कोई माली फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन पर्चे की इदारत से उनमें मजीद खुद एतमादी पैदा हो गई। उर्दू के नामवर अदीब बेदी की मुलाकात के आर्जुमंद रहते और जब मुलाकात करने जाते तो देखते कि बेमिसाल अफसाना निगार डाक के घर में बैठा चिट्ठियों को सिक्के लगा रहा है। हरबंस लिखते हैं, एक दिन तंग आकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लगे भूखों मरने, आमदनी की सूरत रेडियो कहानी या ड्रामा ही था जिसका मुआवजा 25 रुपये होता है। बेदी साहब ने रेडियो आर्टिस्ट की आसामी के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। जनाब अहमद शाह बुखारी पितरस उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। बेदी साहब से मुलाकात तो नहीं थी लेकिन उनकी तसनीफात से वाकिफ थे। आसामी के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी था मगर बेदी साहब सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास किए हुए थे। डरते थे कि नौकरी नहीं मिलेगी। दिल्ली से वापसी पर बताया कि इंटरव्यू के वक्त पितरस साहब उठकर उनसे गले मिले। ये वाक़या सुनाया और आंखों में आंसू उमड़ पड़े। 1943 ईस्वी में बेदी का तखरूर लाहौर रेडियो स्टेशन पर बहैसियत स्क्रिप्ट राइटर के हो गया। बेदी की शादी 1934 ईस्वी में जबकि उनकी उम्र 19 साल की थी एक खुबूल सूरत लड़की सतवंत कौर से हुई जिससे उन्हें 2 लड़के और 2 लड़कियां पैदा हुई। सतवंत कौर एक सलीखामंद ईसार नफ्स और खिदमतगुजार बीवी साबित हुई। तनख्वाह कम और कुंबा बड़ा था। अपने बच्चों के अलावा 2 भाई और 1 बहन थी। घर कैसे चलता था बेदी को खबर नहीं क्योंकि घर की देखभाल सतवंत कौर करती थी। सिलाई और कशीदे का काम करके अखबारात की रद्दी बेचकर नहायत ही किफायतशारी से उन्होंने कुंबा चलाया। सतवंत कौर में बेदी ने औरत का हुस्न और उसकी रुमानियत भी देखी और औरत की अजीम मादिराना सिफात का जलवा भी देखा। बेदी के अफसाने गरम कोट में हुस्न और रुमानियत की झलकियां और अपने दुख मुझे दे दो की इंदो में ईसार नफसी और मादरियत की खसूसियात सतवंत कौर ही का अतिया हैं। लाहौर रेडियो स्टेशन की मुलाजिमत के दौरान उन्होंने रेडियो के लिए कई ड्रामे लिखे। दूसरी जंग अजीम के दौरान उनका तबादला सरहद के रेडियो स्टेशन पर हो गया। तनख्वाह 500 रुपये माहाना हुई। एक बरस काम करने के बाद मुस्तफ़ी होकर लाहौर चले आए और महेश्वरी फिल्म कंपनी में 600 रुपये माहाना पर मुलाजिमत कर ली। इस कंपनी के लिए उन्होंने पहली और आखिरी फिल्म लिखी कहाँ गए जो इसमें बामुसम्मत साबित हुई। फिर उन्होंने संगम पब्लिशर लिमिटेड के नाम से एक मतबा कायम किया। मिन जुमला और किताबों के अपने ड्रामों का मजमुआ सात खेल इस मतबा से शाये किया। किताबों का काफ़ी ज़खीरा मतबा के पास था और अच्छी आमदनी का इम्कान था कि मुल्क तकसीम हो गया। फसादात की आग भड़क उठी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने भाई हरबंस सिंह के यहाँ रोपड़ चले गए जो वहाँ कॉलेज में लेक्चरार थे। फिर वहाँ से शिमला पहुँचे लेकिन शिमला में भी फसादात की आग की जद में आ गया। जिस मकान के बालाई हिस्से में वो ठहरे थे इसके नीचे मुसलमानों का एक कुंबा रहता था। फसादियों ने इस मकान को घेर लिया। शिमला में बेदी के एक दोस्त थे ईश्वर सिंह जो एक अच्छे मुसव्विर थे। बेदी ने ईश्वर सिंह को साथ लिया और एक नकली फौजी परमिट लिए फसादियों के बीच इस तरह दाखिल हो गए गोया वो सचमुच फौज के आदमी हों। मुसलमान कुंबे को जिसमें औरतें ज़्यादा और मर्द कम थे एतमाद दिलाया और मुश्तइल हुजूम से उन्हें बचाकर निकाल लिए। हरबंस एक और वाक़े का जिक्र भी करते हैं। लिखते हैं, चंद शख्स एक आदमी को घेरे हुए थे जो नहायत हरासा था। चिल्ला रहे थे कि ये मुसलमान है, हमें पता लग चुका है। मार डालने की फिक्र में थे। बेदी साहब और ईश्वर सिंह ने बढ़कर कहा कि इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे ठिकाने लगा देंगे। हाथ में लंबी कृपान देखकर इसे भाई साहब के सुपुर्द कर दिया गया। इसे घर लाए, खिलाया पिलाया और हिफाजत से रवाना किया। उर्दू के मशहूर शायर हफीज जालंधरी भी उन दिनों शिमला में थे, उन्हें बचाना भी ज़रूरी था। किसी न किसी तरह उन्हें भी ढूंढ निकाला। दमे रुख्सत हफीज ने नहायत ही रिक्क़त अंगेज़ लहजे में ये शेर पढ़ा, हम ही में थी कोई बात याद तुम न आ सके, हमने तुम्हें भुला दिया तुम ना हमें भुला सके। बाद में हफीज़ ने इन वाक़यात का जिक्र रेडियो लाहौर से भी किया। इस दरमियान बेदी के बीवी बच्चे शिमला आ चुके थे। बेदी उन्हें लेकर फिर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। लाहौर में मॉडल टाउन में उनका मकान लूट चुका था और अब लाहौर जाने का कोई इम्कान ही न था। हिंदुस्तान में सिवाय आसमान के सर पर कोई छत न थी। बेदी सही मानों में खानुमा बर्बाद हुए। बीवी बच्चों के साथ शिमला से निकले, कालका से रेलगाड़ी ली, अंदर दाखिल होने
को जगह न थी किसी तरह।

0: रहा, बीवी बच्चों को अंदर दाखिल किया और खुद छत पर जा बैठे। रैल एक पुल से गुजरी तो पगड़ी उड़ गई मगर सर बच गया। हरबंस लिखते हैं, उधर कुछ लोगों ने, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था, भावा साहबा से जो खूब रो रही थी मजाक शुरू कर दिया। जब गाड़ी अंबाला पहुंची तो बच्चों ने चीख पुकार कर बेदी साहब को नीचे बुला लिया। जब उन्होंने इन शरारती आदमियों से बाज पर्स की तो पूछने लगे, सरदार साहब आपका शुगल क्या है? कहा कि मैं उर्दू कहानियां लिखता हूं। इस पर बहुत खहखहे उड़े। दिल्ली में रिसाला आजकल की इदारत के लिए कोशिश की, लेकिन इस दरमियान उर्दू मुसन्निफीन का एक वफद गवर्नमेंट के ईमा पर कश्मीर गया। बेदी साहब के पास उन दिनों कोई कामकाज नहीं था। जब वापस आने लगे तो शेख अब्दुल्ला साहब, जो उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे, कहने लगे कि बाकी सब लोग जा सकते हैं मगर एक शख्स को मैंने हिरासत में ले लिया है। सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इशारा बेदी की तरफ था, जिन्हें उन्होंने डायरेक्टर जम्मू रेडियो के ओहदे पर मुतायुन कर दिया। रेडियो श्रीनगर की इब्तिदा थी। बेदी साहब बाद में बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब से इख्तलाफ राय होने की वजह से नौकरी छोड़कर चले आए। अब बेदी का रुख बम्बई की तरफ था, जहाँ वो तादम आखर रहे, खूब फिल्में बनाई और खूब कहानियाँ लिखी। फिल्मी दुनिया में बेदी इज्जत की नज़र से देखे जाते और लोग उनकी कदर करते। वजह यह थी कि उन्होंने अपनी फनकाराना शख्सियत को कमर्शियल और फार्मूला फिल्म की मुफाहमतों से बचाए रखा। उनकी फिल्म दस्तक, जो उनकी एक ड्रामे नकल मकानी पर मबनी थी, ने आर्ट और ऑफ बेट फिल्म के रुझान को तकवियत बख्शी। उनकी पहली फिल्म बड़ी बहन थी, जिसे प्रोड्यूसर सर केशव जी ने बनाया। अगली फिल्म दाग थी, जिसे मारूफ डायरेक्टर अम्मिया चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया था और जिसमें दिलीप कुमार ने हीरो का पार्ट अदा किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब हुई। इसकी कामयाबी में बेदी के चमकदार मुकालिमों का बड़ा हिस्सा था। मुकालिमा नवेसी में बेदी ने एक और बुलंदी को उस वक्त सर किया जब उन्होंने देवदास के मुकालिमे लिखे। देवदास की बाज आफरीनी में, जहां उनके डायरेक्टर बिमल रॉय और हीरो दिलीप कुमार का बड़ा हिस्सा था, वहीं बेदी के मुकालिमों ने फिल्म के रूमानी अलमिया और ड्रामाई वाक़ियात को असरंगेज बनाने में अपना गिरा बहा अतिया पेश किया। बिमल रॉय ही के लिए बेदी ने वो सहरंगेज रूमानी कहानी लिखी जो पर्दा सीमी पर मधुमती के नाम से दिखाई गई। बेदी ने अपनी कहानी गर्मकोट को भी फिल्माया, जो इतनी कामयाब नहीं रही। जब ये खबर आम हुई कि बेदी मिर्ज़ा गालिब के मुकालिमे भी लिख रहे हैं तो बाज़ लोगों को ताज्जुब भी हुआ, क्योंकि बेदी का तख्लीकी मिजाज हकीकत पसंदाना और अर्जी था और ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो अपने मुकालिमों में मुगलिया तहजीब की शान व शौकत और नफासत पेश करेंगे। लेकिन जैसा कि बेदी के ड्रामों से जाहिर है, वो संस्कृत आमेज हिंदी और मुफर्रस उर्दू दोनों पर एकसा खुदरत रखते थे। मिर्ज़ा गालिब के मुकालिमों का इम्तियाजी वस्फ बजला संजी, नुक्ता आफरीनी और ज़राफ़त है, जो मिर्ज़ा गालिब के माहौल को हकीकत निगारी का वो रंग अता करता है जो उमूमन मुगलिया ठाट बाट की हामिल इस नौ की फिल्मों में अनखा होता है। इसके अलावा बेदी ने ऋषिकेश मुखर्जी के लिए अनुपमा और सत्याकाम जैसी फिल्में बनाईं। दोनों फिल्मों का सिनेरियो, मुकालमे और उनकी नफसियाती और अखलाकी गहराइयां बेदी के खुलाक जहन की आयनादार हैं। उन फिल्मों के अलावा बहारों के सपने और मेरे हमदम मेरे दोस्त भी बेदी से मंसूब हैं। इस दौरान बेदी का बेटा नरेंद्र भी एक कामयाब डायरेक्टर बन चुका था। अपने बेटे नरेंद्र के मशवरे पर बेदी ने एक तिजारती फिल्म फागन बनाई, जो बुरी तरह नाकाम हुई। आखिरी उम्र में उन्होंने हरिजनों के मसले पर एक फिल्म आंखें देखी भी मुकम्मल की, लेकिन वो रिलीज़ ना हो सकी। बम्बई में क़याम पजीर होने के बाद बेदी ख्वाहिश के बावजूद अफसाना निगारी के लिए बहुत वक्त ना निकाल सके। फिर भी उनके अफसानों के चार मजमूए शाये हुए। कोख जली 1949 ईस्वी में, अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में, हाथ हमारे कलम हुए 1974 ईस्वी में और मुक्ति बोध 1983 ईस्वी में शाये हुआ। कोक जली में 13 कहानियां हैं जो दिल्ली, लाहौर और जम्मू के क़याम के दौरान लिखी गई थी। अपने दुख मुझे दे दो में 9 कहानियां हैं और हाथ हमारे कलम हुए में 10 कहानियां हैं। मुक्ति बोध में कहानियां सिर्फ 6 हैं, बाकी मजामीन और शख्सी खाके हैं।
1: अभी आप डॉक्टर राजेंद्र सिंह बेदी फ़न और शख्सियत पर तकरीर सुन रहे थे। पेशकश थी।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर उर्दू प्रोग्राम नैरंग।
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर SG विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
0: आपका प्रोग्राम यानी नैरंग प्रोग्राम जारी है। तो अब हम चलते हैं, यानी अब हम आपको सुनाने वाले हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। गीतों के साथ साथ, यानी सुरीले गीतों के साथ साथ कुछ बातें भी हम आपसे करते हैं। आज हम आपसे बातें करेंगे खुशबू के बारे में। खुशबू,

समय खुशबू के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कुदरत का एक हसीन तोहफा है ना। खुशबू एक ऐसी खूबसूरत नेमत है जो हमारी ज़िंदगी में ताजगी, खुशी और सुकून पैदा करती है। ये नज़र नहीं आती, इसे हाथों से छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसकी मौजूदगी का एहसास दिल को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। कभी फूलों की महक, इस महक से हमें बाग की सैर का एहसास होता है। कभी मिट्टी की खुशबू हमें बारिश की याद दिलाती है, और कभी किसी अतर की खुशबू किसी खास इंसान या खूबसूरत याद को हमारे इस दिल में जिंदा कर देती है। कुदरत ने इस दुनिया को बेशुमार खुशबुओं से सजाया है। गुलाब, चमेली, मोतिया, नरगिस, रात की रानी, गेंदा जैसे फूल अपनी अपनी खुशबू से माहौल को मुअत्तर करते हैं। सुबह के वक्त खिलने वाले फूलों की महक दिल को अजीब सा सुकून बख्शती है। जब ठंडी हवा फूलों के दरमियान से गुजरती है तो उनकी खुशबू अपने साथ लिए दूर तक फैलाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत खामोशी से इंसान से कह रही हो,

सामिन, हम बात कर रहे हैं खुशबू की। खुशबू सिर्फ फूलों तक महदूद नहीं, बारिश के बाद गीली मिट्टी से उठने वाली खुशबू अपने अंदर एक खास कशिश रखती है। आप सब ने ये कशिश महसूस की होगी, है ना सामिन? गर्मी के दिनों के बाद जब पहली बार बारिश होती है तो मिट्टी की सूंधी खुशबू पूरे माहौल को बदल देती है। ये खुशबू बचपन की यादें ताज़ा कर देती है। खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना, ठंडी हवा महसूस करना और मिट्टी की सूंधी खुशबू को महसूस करना इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीम अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत सुरीले गाता जा प्रोग्राम जारी है। सामिन, खुशबू की हम बात करें तो खुशबू का ताल्लुक हमारे जज्बात और यादों से भी बहुत गहरा होता है। बास खुशबुएं हमें अपने घर, अपने बचपन या अपने प्यारों की याद दिलाती हैं। किसी खास अतर की खुशबू महसूस होते ही हमें कोई पुराना वाक़ा याद आ जाता है। इस तरह घर के सहन की खुशबू, किताबों या किसी फूल की खुशबू भी दिल में छुपी हुई यादों के दरवाजे खोल देती है। खुशबू में

खास बात यह है कि वो माजी को अचानक हाल के सामने ला खड़ा कर देती है। खुशबू इंसान की शख्सियत पर भी असर डालती है। साफ सुथरा रहना, अच्छा लिबास पहनना और खुशबू लगाना अच्छी आदत में शुमार होता है। एक खुशगवार खुशबू इंसान के इर्द गिर्द के माहौल को भी बेहतर बनाती है। जब कोई शख्स साफ सुथरा हो और हल्की खुशबू इस्तेमाल करे तो इसके साथ बैठने वाले लोग भी ताजगी महसूस करते हैं। इसलिए सफाई और पाकीजगी के साथ खुशबू का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में भी अहम मुकाम रखता है।

गीत सुरीले गाता जा मैं, हम चल पड़े हैं खुशबू के सफर पे। खुशबू सिर्फ जिस्म या कपड़ों से आने वाली महक का नाम नहीं, इंसान के अखलाक भी एक तरह की खुशबू होते हैं। एक अच्छे इंसान की गुफ्तगू, इसका रवैया, उसकी मुस्कुराहट, उसकी मदद और उसकी नरमी भी लोगों के दिलों में खुशबू की तरह फैलती है। बाज़ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इनके अच्छे अखलाक और नेक आमाल की खुशबू बरसों तक लोगों के दिलों में बाकी रहती है। एक नर्म लफ्ज़ किसी परेशान शख्स के लिए खुशबू बन सकता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी गमज़दा शख्स को तसल्ली देना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी ऐसी खुशबू है जो आँखों से नज़र नहीं आती, लेकिन दिल से इसे महसूस किया जा सकता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जिस्म को खुशबू से मुअत्तर करने के बजाय अपने किरदार को भी अच्छाइयों की खुशबू से मुअत्तर करना चाहिए। आज के दौर में खुशबुओं की दुनिया बहुत वसी हो चुकी है। मुख्तलिफ अकसाम के अतर, परफ्यूम, साबुन, शैम्पू और दीगर खुशबूदार अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। फूलों, फलों, लकड़ियों और मुख्तलिफ कुदरती अज्जा से खुशबुएँ तैयार की जाती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में अतरसाज़ी एक कदीम और अहम फ़न भी रहा है। ख़ास तौर पर गुलाब, अंबर और मिश्क जैसी खुशबुएँ सदियों से लोगों की पसंद बनी रही।

आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा 101.9 FM MHz पर उर्दू प्रोग्राम नैरंग में। खुशबू का इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए। बहुत तेज़ खुशबू बाज़ लोगों के लिए नागवार भी हो सकती है, इसलिए ऐसी खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए जो दूसरों के लिए भी खुशगवार हो। खुशबू का असल मकसद दूसरों को तकलीफ देना नहीं बल्कि माहौल को खुशगवार करना होता है। खुशबू हमें एक और सबक भी देता है, जैसे फूल खुद अपनी खुशबू महसूस नहीं करते लेकिन इनकी खुशबू दूसरों तक पहुंचती है। इस तरह एक नेक इंसान को अपने अच्छे कामों का दिखावा नहीं करना चाहिए, वो खामोशी से अच्छाई करता रहे, क्योंकि अच्छी शख्सियत की खुशबू खुद ब खुद दूसरों तक पहुँच ही जाती है। ज़िंदगी भी खुशबू की तरह है। अगर हम मोहब्बत, खलूस, हमदर्दी, सब्र, शुक्र और नेकी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी मौजूदगी दूसरों के लिए खुशगवार बन सकती है। इसके बरक्स अगर हमारे रवैये में गुस्सा, नफ़रत, हसद और तकब्बुर हो तो हमारी मौजूदगी दूसरों के लिए बोझ बन सकती है। इसलिए खुशबू का किरदार अपनाना चाहिए और खुशबू की तरह बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे। अब वक्त हमें इशारा कर रहा है कि सुरीले गीतों का सफर खत्म किया जाए, लेकिन आज के लिए कल फिर इस सफर के साथ हम आपके साथ होंगे। तो चलिए चलते चलते हम आपको सुना दें पयाम-ए-शब, पेशकश है नदीम अख्तर ज़ैदी की।

दिल के वीरानों में घूमोगे तो भटक जाओगे। रौनक कूचे वो बाजार से आगे ना बढ़ो। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे दर्द, राज और आजमाइशें पोशीदा होती हैं, जिन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए दूसरों के बातिन का फैसला करने, उनकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करने या छुपी हुई बातों की खोज लगाने से गुरेज करना चाहिए। इज्जत उसी में है कि इंसान दूसरों की पर्दापोशी करे, उनकी हुदूद का एहतराम करे और अपने दिल को भी अल्लाह की याद, नेक अमाल और अच्छे अखलाक से आबाद रखे। हर दिल एक अलग दुनिया है, उसके राजों का एहतराम करे, दूसरों की निजी जिंदगी में बिला जरूरत झांकने से परहेज करे। जाहिरी रौनक हमेशा अंदरूनी सुकून की अलामत नहीं होती। अपने दिल को हसद, नफरत और कीने से पाक रखें, यही हकीकी आबादी है। दूसरों के दिलों के राज टटोलने के बजाय अपने दिल को संवारने की फिक्र कीजिए, क्योंकि आबाद दिल ही इंसान की असल दौलत है।

नदीम अख्तर जैदी से अभी आप पयाम शब सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग ख़त्म करने की आपकी आरजे नूर अफशां को दीजिए इजाज़त। कल इसी वक्त यानी रात 9:30 बजे और इन्हीं मीटर्स पर यानी 101.9 पर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए शब खैर।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं और कुछ देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।

0: करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो, तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. Namaskar, good evening and welcome to Market Mantra. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और स्टूडियो में आज हमारे साथ तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले डालते हैं नजर मुख्य समाचारों पर।
0: यस, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन अराउंड 1%, सेंसेक्स प्लंजेस ओवर 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,450। Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की गिरावट। सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,450 से नीचे आया। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।

0: Well, friends, before we move ahead, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग तीन महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक यानी 1.1% लुढ़क कर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक यानी 0.9% नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी आधा आधा प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended lower for the third consecutive session today. The Sensex plunged 813 points or 1.1% to close at 74,764. The Nifty also shed 204 points or 0.9% to settle at 23,432. In the broader market on the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices also declined 0.5% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियां HCL टेक 4.5%, इंफोसिस 4.4% और टेक महिंद्रा 3.9% रही। वहीं सबसे ज्यादा लाभ वाली कंपनियों में अडानी पोर्ट्स 3.7%, टाटा स्टील 2.4% और ट्रेंड 1.1% के बढ़त में थी।
0: A look at the sectoral indices. Well, in the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, IT fell 3.2%, focused IT dropped 3%, and realty lost 2%. In contrast, middle advanced 1.9%, hospitals gained 1.4%, and utilities added 1.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,600 companies declined, 1,792 advanced, and 196 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ। उदयन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर बाजार को हम देखें तो तीन महीने पहले के स्तर पर हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये चिंता का विषय है या ये एक मार्केट में सर्टेन ऐसी स्थिति जिस पर आगे आकर के हम बढ़त पा सकते हैं या इससे भी नीचे जाने की संभावना है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि तेल के बढ़ते दामों की वजह से जो खाड़ी में संघर्ष चल रहा है उसके वजह से तेल के दामों में जो उछाल आया है और एक $100 प्रति बैरल का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसको मेरे ख्याल से आज रीच किया गया है, तो वो एक चिंता अपनी जगह में बनी हुई है। और इसको अब जो

0: बाजार है विश्व स्तर में, लोगों का अब ये मानना हो रहा है कि ये जो संघर्ष है ये अब बहुत जल्दी ये रुकने वाला नहीं है। और जो दाम है, सबसे इम्पोर्टेंटली कच्चे तेलों के दाम में जो एक कमी, जो एक सस्टेन्ड कमी है, वो शायद देखने को फर्स्ट हाफ ऑफ 2027, 2027 अगले साल में, शायद तब तक का इंतज़ार करना पड़े। और ये आपूर्ति से जुड़ी हुई बात है, और जब तक वो संघर्ष खत्म नहीं होगा तो आपूर्ति में जो जो कैपेसिटी में, जहाँ पे रिफाइनरी होती है, जो मालवाहक जहाज है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सप्लाई रिलेटेड इश्यूज हैं, ये रातों रात ठीक नहीं होते हैं, तो इसमें वक्त लगेगा। तो वो बात अब मार्केट्स फैक्टर इन कर रही हैं। दूसरी बात आपने बताया कि ये निफ्टी 50, तो कई मुझे एक सोच जो काफी विश्लेषक कर रहे हैं वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। वो ये है कि वो उनका ये कहना है कि आप हम लोग निफ्टी 50 को देख के मार्केट्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन वाले जो है उसी से डिपेंड, वहीं से निकलता है। पर लोगों का दावा है, दावा नहीं, ये तर्क है, और वो उसमें डेटा भी है कि दूसरी जो कंपनी, जो वो फिफ्टी निफ्टी 50 से आगे जो मिड कैप की टेरिटरी में चली जा रही है, तो उनके अगर आप रिजल्ट्स देखें, उनके अगर फाइनेंशियल्स देखें, वहां पे काफी प्रगति नजर आ रही है, और वो आपके शेयर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इंडियन जो वित्तीय संस्थान है, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो भी वहां पे खरीदारी कर रहे हैं, तो वो लार्ज कैप में नहीं कर रहे हैं, जो कि निफ्टी 50 तो है ही वो, पर वो उधर उस साइड में जा रहे हैं। तो क्योंकि वहां पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि वहां पे निवेश हो रहा है, तो आप पाएंगे कि वो जो इंडिया, हालांकि आज प्रभावित तो वो भी हुए नेगेटिवली, जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा, पर वहां पे लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। तो आप 1 ईयर 6 मंथ अगर रिटर्न्स देखें, जो कि देखना नहीं चाहिए इक्विटीज में, 3 ईयर देखें, 2 ईयर देखें, 5 ईयर देखें, तो सारे पीरियड्स में अगर देखें, रिस्क एडजस्टेड देखें, सब में वो आप बेहतर करते हुए पाएंगे। तो उनका तर्क ये है, और ये मेरे को काफी आकर्षक लगता है, तो ये श्रोताओं को बताने लायक बात है।
1: लेकिन इन सब के बीच में आईटी शेयर्स में गिरावट हम जो देख रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आईटी के फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसके बाद भी हम लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं।
0: तो वो कारण सीधा तो मैं नहीं बता पा रहा, क्योंकि मैंने विश्लेषण किया नहीं है,
1: जी।
0: पर मेरे को ताज्जुब ना होगा कि अगर ये इसका कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनकी सेलिंग की वजह से है, क्योंकि वो भी बाहर लेके निकल रहे हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत जैसे इमर्जिंग इमर्जिंग मार्केट वो कहते हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो एक रिस्क ज्यादा होता है, फिर करेंसी से जुड़ी हुई रिस्क होती है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से जुड़ी हुई रिस्क होती है, जो कि हमारे केस में नहीं, हम हमारी करेंसी के केस में है, और हमारी करेंसी को दबाव में है। तो वो जब आप देखते हैं तो वो एक हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और यील्ड्स जो है लोअर रिस्क यील्ड्स जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, जो कि बहुत सेफ माने जाते हैं, क्योंकि यील्ड वहां पे बेहतर हो रहे हैं। तो कोई फंड मैनेजर होगा इंटरनेशनल, वो ये देखेगा कि ये रिस्क लेके मैं ये उठाऊं या मैं इधर लगाऊं, तो वहां पे एक जो कंपैरिजन है वहां पे वो फेवरेबल हो रहा है। तो कई बार जो पुल आउट हो रहा है वो कुछ दूसरे मार्केट्स में भी जा सकता है, जैसे आप साउथ कोरिया में आप दिलचस्पी रख सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल फंड मैनेजर है साउथ कोरिया दूसरे मार्केट्स में। पर बाकी जो है आप इस तरफ भी देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि नहीं भाई रन अप काफी हो गया गोल्ड और दूसरे एसेट क्लासेस में, हम यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए, तो मुझे ना ताज्जुब हो कि ऐसी बात हो रही हो और जिसकी वजह से आप ऐसे रिजल्ट्स देख रहे हैं।
2: Then, Nikhil mentioned IT. I think he touched a raw nerve, so to speak. Could it also be because of the fact that US, much of our IT export is in the US and Europe, and they are having high inflation? It's about 3.4% in US, which is much beyond their digestible limit. Do you think that could be a factor as well?
0: It could be, but you know. See, you will not. I mean, I know I'm an eternal optimist, but one has to also give. One has to look at it also with equanimity, right? See, is it just, is that the whole whiplashing that has been happening about Indian IT is that, oh,

0: इमीडिएटली मुद्रास्फीति के जो दबाव है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, वो सीधे आ जाते हैं और ऑलमोस्ट इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है. तो वो क्योंकि वो एक लाइफ ब्लड की तरह है, अब आपके शरीर में रक्त जो है सारे अंगों में जाती हैं, तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के में इम्पैक्ट होगा, चाहे वो एनर्जी जनरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो. ट्रांसपोर्ट में अगर होगा तो सारी चीज़ों में आ जाएगा. तो वो एक प्रेशर है और हम अधिकतर बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक जो सोर्सेज हैं वो है नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है. और यूं तो हम रिन्यूएबल्स, हमारे जो नॉन पेट्रोलियम वाले जो हमारे सोर्सेज हैं वो हम वहाँ पे बेहतर कर रहे हैं रिन्यूएबल्स में, पर अभी भी हमारे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. तो वो सीधा इम्पैक्ट करेगा और वो क्योंकि ये मार्केट मंथ प्रोग्राम है तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल्स में असर होने के अलावा मेरे को तो कोई वो नज़र नहीं आता कि उसमें असर आप देखेंगे. और कुछ दिन तक रहा तो वो तो आप ज़रूर पाएंगे, हो सकता है कुछ केस में इमीडिएटली देखें, कुछ केस में कैस्केडिंग इफेक्ट होगा वहाँ आगे चल के वो मिलेगा, और कुछ तो ऑब्वियसली पास ऑन हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे कंपनीज. तो वो इम्पैक्ट है. बट ये भी मैं कहता चलूं, भारत क्योंकि हम ऐसे पीरियड से गुजर चुके हैं जहाँ पे मुद्रास्फीति होती रही है, तो हमारे जो मैनेजर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में फिस्कल को मैनेज करें या मॉनेटरी मौद्रिक नीति को मैनेज करें या कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेज करें या लघु उद्योग में करें, हमें आदत है, प्रैक्टिस है
1: जी.
0: ये प्रैक्टिस बाकियों को नहीं है दुनिया में. तो वो टीका जो है ना मुद्रास्फीति के विरुद्ध जो टीका है वो हमें लग चुका है, तो इसमें से हम बेहतर उभरेंगे और उभर जाएंगे.
1: उधर एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज की स्थिति को देखें, जहां पर हम देख रहे हैं कि 3 महीने के पहले के स्तर पर यानी नीचे के स्तर पर आ चुके मार्केट में, इन्वेस्ट करने के हिसाब से या मार्केट में कुछ खरीदने के हिसाब से, ये कैसा समय है?
0: फैंटास्टिक समय है, पर आप वो सब ना करें. आप कोई भी वक्त जो है निवेश जो है वो डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हम हर रोज सुबह व्यायाम करते हैं
1: जी.
0: कुछ चीजें जो है नियमित रूप से करते हैं, तो जैसे पौष्टिक खान पान करते हैं, ये वो आदत की तरह है. आप कुछ ये नहीं कि आपने एक दिवाली या दशहरे का भोज की तरह आपने निवेश किया कि हमने साल में एक बार करें, वो अगर करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है. आप नियमित रूप से करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हर मार्केट में मिलती हैं. और ये जो दो साल वाली बात है, ये इट इज 2 साल 2 महीने वट एवर आप कहेंगे, इट इज डजेंट लुक नाइस, देखने में लगता नहीं कि ऐसा लगता है हम वहीं बैठे हैं, हमने एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया, फिर कहीं और डाल देते तो अच्छा होता. पर दिक्कत यह है कि अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, उसकी अपनी यूटिलिटी होती है, अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को लड़ने के लिए हथियार सिर्फ इक्विटी ही है. इसलिए आपको जो पैसा आपको फॉरेन नहीं चाहिए आप वहां लगाएं, उसको छेड़े मत. मैं कई लोगों को देख चुका हूं, वो ना क्या करते हैं, हर घंटे देखते रहते हैं, वो नहीं करना. डाल के जैसे आप एक पौधे के वो प्लांट डालते हैं और वेट करते हैं, पानी देते रहते हैं, वही काम निवेश के साथ करना है.
2: राइट, सो हैव अ डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट, राइट. ओके, मूविंग ऑन. सॉरी, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 10,700 crore rupees. ब्रीफिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉड Casting Minister Ashwini Vaishnav said that these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of the Indian Railways by about 656 kilometers. While the Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, increasing the existing network of the Indian Railways by about 540 kilometers. The total estimated cost of the projects is more than 10,000. 21 crore and they are planned to be completed by up to 2029-30. Well, Mr. Vaishnav also informed the government has decided to four lining of all the 7 high density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project,

0: project, Minister Ashwini Vaishnav informed that the bullet train service will commence next year.
1: बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन 2027 में फिक्स है. कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है. पहले सूरत से बिलीमोरा का 50 किलोमीटर का सेक्शन का प्लान था, अब उस प्लान को और बढ़ा के 100 किलोमीटर है. सूरत से वापी, वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा. और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी.
0: So then, talking about these developments on infrastructure, particularly the railways and the four-lining of the 7 high-density railway corridors, do you think it'll add to the PM or it'll enhance the PM Gati Shakti mission?
2: Of course it will. The good part is that we need these freight corridors.
0: Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. In reply to a question on the Mumbai Ahmedabad bullet train project, Minister Ashwini Vaishnav informed that the bullet train service will commence next year.
1: बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन 2027 में फिक्स है. कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है. पहले सूरत से बिलीमोरा का 50 किलोमीटर का सेक्शन का प्लान था, अब उस प्लान को और बढ़ा के 100 किलोमीटर है. सूरत से वापी, वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा. और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी.
0: So then, talking about these developments on infrastructure, particularly the railways and the four-lining of the 7 high-density railway corridors, do you think it'll add to the PM or it'll enhance the PM Gati Shakti mission?
2: Of course it will. The good part is that we need these freight corridors.

0: की भी यहाँ पर बात होती है?
1: देखिए, ब्रिक्स में जो है एक समन्वय करने की कोशिश की जा रही है फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच में. एक तो ट्रेड है जो कि हो रहा है और वो होता रहेगा, पर फाइनेंशियल सिस्टम मान लीजिए एक कंट्री ब्रिक्स में, एक कंट्री दूसरी कंट्री को पेमेंट करती है, आदान प्रदान हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या खुद के करेंसी में, खुद के पेमेंट सिस्टम में, इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है, पर क्या हम दूसरे सिस्टम्स हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं? कुछ कंट्रीज अपने हिसाब से कर रही हैं, म्यूचुअली आपने किया. हमारे जो जैसे यूपीआई इस्तेमाल होता है, क्या हम यूपीआई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं बाकी दूसरे देश हमारे यहाँ इस्तेमाल किया, हमने उनके देश में किया? अगर ऐसा हो जाता है, ब्रिक्स इतना बड़ा, इतनी बड़ी मानवता का इतना बड़ा हिस्सा को कवर करता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी भी हम जो सिस्टम और प्लेटफॉर्म में डिपेंड करते हैं वो यूरोप एंड अमेरिकन सेंट्रिक है. तो वहां से थोड़ा सा अगर एक कुछ हमें अल्टरनेटिव विकल्प और मिल जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है उसको मेंटेन करके पॉलिसी पोजिशन और इजिली हम ले सकते हैं.
0: आगे बढ़ते हैं. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आज 1.4% की बढ़त रही, जबकि जापान का निकेई 225.02% गिरकर बंद हुआ. उदयन जी, अभी अगर हम बात करें चाइना की इन्फ्लेशन की, तो लगभग 3.8% टू 3.5% तक की बात हो रही है आगे बढ़ने की. ये किस तरह के हालात हैं? मतलब 3.5% से 3.8% तक जाने के जो हालात हैं, इनका क्या असर देखने को मिलेगा?
1: देखिए, ये उनका कंज्यूमर के हिसाब से और प्रोड्यूसर के हिसाब से अलग अलग चल रहा है. कंज्यूमर में लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि उनका भी, उनके भी डोमेस्टिक डिमांड चैलेंजेस हैं कुछ कुछ इलाकों में. उनके भी जो यूथ जनरेट हो रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से नहीं हो रहा है. तो वर्ल्ड ओवर ये एक चैलेंज है. कई लोगों का आर्ग्यूमेंट मतलब कॉन्वर्सेशन में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे भारत को ही ये चैलेंज है. ये चैलेंज हर जगह है और सरकारें अपनी हिसाब से वो डील कर रही हैं. तो डोमेस्टिक में जो आप अगर उनका रिटेल देखेंगे, मेरा हंच ये है कि वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा. ये कुछ और इनपुट कॉस्ट है उसके वजह से हुआ होगा, या कुछ और इश्यूज हैं उन जिनके वजह से हुआ होगा. अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखें, वो बहुत दिलचस्प सिचुएशन, दिलचस्प मतलब हमारे लिए अगर हम वहां रह रहे होते वो इतना दिलचस्प नहीं होता. वो ये है कि उनके एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, पर उनका डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इंटरनल जो डायनामिक्स है वो, उसका जो अगर हेल्थ चेकअप लेंगे वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो उनके, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स एक्सेस कैपेसिटी है, दूसरी जगह में उन्होंने एक्सपोर्ट किया, हर जगह में उन्होंने उनका ट्रेड बैलेंस उनकी तरफ और मूव कर गया, क्योंकि वो यूएस से हटके दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वो वहां पे ब्रिलियंट कर रहे हैं. तो कई बार क्या होता है, हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, पर आपको जो पिक्चर है वो संतुलित एक बैलेंस्ड वे में देखना पड़ेगा. तो इंटरनल डिमांड का वहां पर चैलेंज है. तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइसेस, मेरे को ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इनपुट प्राइसेस जो उनके पास पहुंची है, ऑल्दो वो सोर्सिंग बहुत अच्छा करते हैं, मेटल्स वगैरह जो है वो सीधे अफ्रीका, इंडोनेशिया जहां से सोर्स है, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेन बना, सप्लाई चेन.

0: वे में देखना पड़ेगा। तो इंटरनल डिमांड का वहां पे चैलेंज है। तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइसेस, मेरे को ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इनपुट प्राइसेस जो उनके पास पहुंची हैं, ऑल्दो वो सोर्सिंग बहुत अच्छा करते हैं, मेटल्स वगैरह जो हैं वो सीधे मान लीजिए अफ्रीका, इंडोनेशिया जहां से सोर्स है, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेन बना, सप्लाई चेन बना रखे हैं, पर फिर भी इसका इम्पैक्ट जरूर हो रहा होगा।
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% की बढ़त के साथ 1,53,486 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, और चांदी 0.6% बढ़कर 2,35,249 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। उद्यन इस वक्त निवेशकों को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, निवेश करने की या सब्र करने की या थोड़ा बढ़ाने की?
0: नॉर्मल काम करने के, कुछ स्पेशल नहीं करना। निवेश जब आप करते हैं वो बोरिंग होना चाहिए, एक्सरसाइज की तो डेली एक्सरसाइज में जो करते हैं, हर रोज आप नया एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वही प्राणायाम करेंगे, जो वही जो भी आसन करते हैं, जो भी जिम में जाते हैं, तो जो रेगुलरली करते हैं वही कीजिए, और बोरिंग चीजें करेंगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलेंगे।
2: सो समटाइम्स डूइंग नथिंग कैन आल्सो बी अ स्ट्रेटजी।
0: ओह एब्सोल्युटली।
2: ऑलराइट फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बिफोर दैट, यस, थैंक यू वेरी मच उदयन फॉर जॉइनिंग अस एट आकाशवाणी एंड giving us an insight into the markets. All right, the headlines now. Benchmark domestic indices decline around 1%. Sensex plunges over 800 points. Nifty settles below 23,450. Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states. And that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. So, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

कहत्स ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। आज आपके साथ है अर्पना। 11:41 और 5 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ। संगीत शंकर जयकिशन का है, फिल्म का नाम है ससुराल। और इस गीत के बाद अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में होगा, साथ दिया है आशा जी ने और संगीत पद है ओपी नैयर का। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत होगा, फिल्म का नाम है नया दौर। तो दो गीतों का बैक टू बैक आप आनंद लेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, गीत मेरे मनमीत में।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: ग्यारह बजकर 50 मिनट और 25 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में। अगला गीत होगा लता जी की आवाज में, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म का नाम है मेरा साया।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: 12 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: ग्यारह बजकर 56 मिनट और 25 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आशा जी की आवाज में होगा, ओपी नैयर का संगीत है, फिल्म का नाम है कश्मीर की गली। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए।

0: इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIST संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन का विषय है विकासशील देशों के बीच सहयोग के जरिए शुष्क क्षेत्र की कृषि में बदलाव। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र के जुड़े साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म जिनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैरकानूनी मार्केटप्लेस को चलाता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने उन 2 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है जिन पर जिनबी गारंटी के कामकाज के लिए जरूरी डिजिटल करेंसी, प्रौद्योगिकी और दूसरी वित्तीय सेवाएं देने का आरोप है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-track projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू है आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कर रही हूँ हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता भी साथ में। कि दिल तो ले ही लिया है, अब जान का क्या इरादा है, साफ साफ कह दो, क्यों धड़कने को तड़पाते हो।

जुबान से कुछ ना कहा, बस आंखों से बयां किया। जुबान से कुछ ना कहा, बस आंखों से बयां किया। दिल की ये कहानी या तुमने समझी या फिर हमने जानी।

तेरे बिना तो ये जिंदगी एक सूने रास्ते जैसी है, तेरे बिना तो ये जिंदगी एक सूने रास्ते जैसी है। कदम तो चलते हैं मगर मंजिल का पता नहीं होता।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कार्यक्रम है निशिगंधा। अंजू है आपके साथ।

अपनी नजर से खुद को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। अपनी नजर से खुद को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। कभी मेरी नजर से देखो, तुम अपनी कीमत खुद ही जान जाओगे।

अब तो दूर जाने का सोचना भी एक सजा जैसा लगता है। अब तो दूर जाने का सोचना भी एक सजा जैसा लगता है। तुमसे मिलकर ही तो मुझे ये जहां अब अपना जैसा लगता है।

दुनिया की हर बात हर फसाना भूल जाते हैं हम। दुनिया की हर बात हर फसाना भूल जाते हैं हम। जब तुम सामने आते हो तो खुद का ठिकाना भी भूल जाते हैं हम।

जमाने भर की दौलत और शोहरत फीकी है इसके आगे, जमाने भर की दौलत और शोहरत फीकी है इसके आगे, तेरी एक निगाह के सिवा हमें और क्या चाहिए।

खामोशियां अब हमसे झेली नहीं जाती, खामोशियां अब हमसे झेली नहीं जाती, कि ये दिल तड़प कर पुकारता है तुम्हें जब भी घुटने टेकता है किस्मत के आगे।

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। आप ही होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम फिर आपसे मिलेंगे 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

0: होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र से जुड़े लोग साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमरीकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केट प्लेस को चलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे स्कैम सेंटर हर साल अमरीकी पीड़ितों से अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन विदेशी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों में एकजुट है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 km and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said, the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts

ona se calhar. हजार चेहरे हैं इस दुनिया के मेले में, हजार चेहरे हैं इस दुनिया के मेले में, पर सुकून सुकून सिर्फ तेरी तस्वीर देती है तन्हाई के झेले में।

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 7 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकर आई हूँ बहुत ही मधुर गीत कार्यक्रम गीत सुहाने में। एक बार फिर से आप सभी को मेरा

इबादत की तरह चाहा है मैंने तुम्हें हर लम्हा, इबादत की तरह चाहा है मैंने तुम्हें हर लम्हा, मेरी मोहब्बत पे शक ना करना क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं।

तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की इस दिल ने, तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की इस दिल ने, पर हर धड़कन ने रुककर कहा कि तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं।

नजरें जहां भी जाएं, बस तुम्हारा ये अक्स दिखाई देता है। नजरें जहां भी जाएं, बस तुम्हारा ही अक्स दिखाई देता है। हर पल यही लगता है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। जब भी हवाओं में कोई साया लहराया सा लगता है।

ना कोई पर्दा ना कोई बनावट तुम्हारे चेहरे पर, ना कोई पर्दा ना कोई बनावट तुम्हारे चेहरे पर, तेरी सादगी नहीं जो जादू किया है मेरे इस दिल पर।

चांद भी तुम्हें देख नजरें चुराता है और बादलों के पीछे छुप जाता है। उसे डर है कि जमाना तुम्हें देखकर कहीं उसे न भूल जाए।

पास बैठो कि मैं अपने दिल की बात कह दूँ, पास बैठो कि मैं अपने दिल की बात कह दूँ, खुदा के लिए रुक जाओ कहीं रात ढल ना जाए।

दोस्तों भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर फिर से आपके साथ रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाले बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री

मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व विकास सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास और अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण बाजार और व्यापार के स्पष्ट नियमों तक आसानी पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा, कौशल और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से उन्हें देश के विकास का वाहक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जल डमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने की अपील की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूं अंजू आपके साथ लेकर बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

हर एक रुत में तेरा इंतजार करते हैं। ना तुम समझ सकोगे जिस कयामत तक हम तुम्हें उतना ही प्यार

तलाश में निकले थे उसकी और हम खुद को ही खो बैठे। तलाश में निकले थे उसकी और हम खुद को ही खो बैठे। एक ही दिल तो था हमारे पास, वो भी हम उसके नाम कर बैठे।

नजरें चुराने की उम्र में नजरें मिलाने का दौर आया है। नजरें चुराने की उम्र में नजरें मिलाने का दौर आया है, जैसे कह रहा हो कि अब दिल हारने का वक्त।

तेरी तकदीर से जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं, तेरी तकदीर से जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं, खुदा ने मेरी हर दुआ में सिर्फ तुझे ही तराशा है।

दोस्तों ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, जल्द ही आपसे जब मिलूंगी क्योंकि अब स्टूडियो में आ चुकी हैं भारती, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आगे का सफर रहेगा हम रहे के साथ, भारती के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक की

0: वापसी का भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पिछले 10 दिनों में देश में अलग अलग जगहों पर 6 बड़ी कार्रवाई की। इन छापेमारी में 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित इंडियन स्टार कछुए, 12 जिंदा टोके गेको, एक तरह की छिपकली, लगभग 24 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क और करीब 500 ग्राम बाघ की हड्डियां जब्त की गईं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन ऑपरेशनों के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DRI के अनुसार जब्त की गई ये अलग अलग चीजें संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी को उजागर करती हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 20,800 करोड़ रुपीज अक्रॉस 9 स्टेट्स। द प्रोजेक्ट्स विल कवर अराउंड 1,196 किलोमीटर एंड आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव रेल कनेक्टिविटी, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi in a social media post highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Parvari Elevated Corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, where infrastructure is good, there is capital investment, and where there is capital investment, employment is created. He said several highways, bridges, flyovers and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH-66, NH-748 and airport connectivity, along with proposals to improve

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की।

रात जितनी खामोश होती जाती है, दिल की आवाज़ उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह कोई चुपचाप हमारे पास बैठा महसूस होता है। कहने को तो ये सिर्फ एक एहसास है, मगर कभी कभी यही एहसास पूरी दुनिया से ज़्यादा अपना लगता है। प्यार शायद वही है जहाँ शब्द कम पड़ जाएं और आँखें बहुत कुछ कह जाएं।

कभी लगता है जैसे प्यार भरा मौसम अचानक दिल की खिड़की पर दस्तक दे गया हो, हवा में किसी की याद की खुशबू हो और मन पुराने सपनों की गलियों में फिर से टहलने लगे।

हमने जो सपने देखे थे उनमें कुछ रंग समय ने भर दिए और कुछ रंग अब भी आपकी यादों के पास सुरक्षित हैं, क्योंकि कुछ सपने आंखें खुलने के बाद भी दिल में सोते नहीं, वे उम्र भर हमारे साथ चलते हैं।

हम सफर सिर्फ वह नहीं जो सफर के साथ चले, हम सफर तो वह है जो दूर होकर भी हर मोड़ पर अपने होने का एहसास दे जाए।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कभी सुनी बहारें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। फूल खिलते हैं, हवाएं चलती हैं और दिल पूछ बैठता है, क्या कोई हमें भी उसी तरह याद कर रहा होगा जैसे हम उसे याद कर रहे हैं।

मन भी कोरे कागज जैसा होता है। फिर कोई आता है और उस पर अपने प्यार की ऐसी कहानी लिख जाता है जिसे मिटाने की कोशिश भी यादों को और गहरा कर देती है।

शायद प्यार की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाश लेना और बिना कहे भी एक दूसरे को समझ लेना।

पलकों के पीछे छिपे रहते हैं, दुनिया से अनकहे मगर दिल से बेहद करीब। आंखें बंद करो तो वही चेहरा सामने, वही मुस्कान यादों में और वही आवाज दिल के किसी कोने में सुनाई देती है।

इस रात सुहानी में कुछ पल उन खूबसूरत एहसासों के नाम करें जो हमारे पास नहीं होकर भी हमारे दिल के सबसे करीब हैं। गीतों की मिठास के साथ, यादों की खुशबू के साथ और उस प्यार के साथ जिसे कहने के लिए शायद शब्दों की नहीं बस एक धड़कते हुए दिल की जरूरत होती है। और छोड़ के जा रही हूँ मैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ आपको, और जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर। जी हाँ, फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली

0: के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं के शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरीना सवालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिका पेगुला से, जबकि चौथी सीड कोको गाफ का मुकाबला कजाकिस्तान की एलेना रायबानिका से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometer and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. The Department of Land Resources, that is DOLR, under the Ministry of Rural Development, will launch the operational guidelines for the Digital India Land Records Modernization Program, DILRMP 3.0, today. The ministry informed that the upcoming DILRMP 3.0 will roll out as a central sector scheme with an anticipated financial outlay of 565.50 crore rupees. The department will also implement this ambitious five-year roadmap across all states and union territories. The launch event will unveil the core vision of DILRMP 3.0, which shifts the focus from simple digital record keeping to establishing a comprehensive GIS-enabled land stack. The ministry added that this digital public infrastructure will seamlessly integrate maps, land ownership details, property registration, and court cases into a single interoperable ecosystem. India will participate in the 11 new skill categories for the first time at the 48th World Skills Competition to be held at Shanghai in China from the 22nd to 27th of this month. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship said that Team Skill India will participate in 63 out of 64 skills with a contingent of nearly 70 competitors. The ministry added that it makes it one of India's largest and most diverse representations at the World Skills to date. The 11 new skills in which India will compete for the first time include dental prosthetics, digital interactive media design and others.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आज आपके साथ आपके दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म नया संसार से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार चित्रगुप्त, गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म नसीब अपना अपना से आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म एक फूल दो माली से रविशंकर शर्मा की आवाज़ में, संगीतकार रविशंकर शर्मा, गीतकार रविशंकर शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म नजराना प्यार का से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार विठल भाई पटेल, संगीतकार हेमंत भोसले।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्रोग्राम का आखिरी गीत है फिल्म साजन साथ निभाना से उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीतकार आनंद मिलन और गीतकार समीर। और छोड़ के जा रही हूँ मैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ, जल्द मिलूंगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना नए प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे

सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन ईश्वर की ओर से मिला एक नया अवसर है। बीती बातों का बोझ छोड़कर आज की शुरुआत विश्वास और मुस्कान के साथ करें। मन में उजाला हो तो साधारण सा रास्ता भी खूबसूरत सफर बन जाता है। तो जी हाँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी की।

कृष्ण का स्मरण जीवन में प्रेम, सरलता और मुस्कान भर देता है। जैसे कृष्ण की बांसुरी बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी ओर बुलाती है, वैसे ही हमारा व्यवहार भी प्रेम और अपनेपन से भरा होना चाहिए।

ईश्वर से केवल सुख मांगना ही क्यों, ऐसी शक्ति भी मांगी कि कठिन समय में हमें टूटे नहीं, सही रास्ते से भटके नहीं और दूसरों के लिए भी सहारा बन सके। मन मजबूत हो तो परिस्थितियां भी बड़ी नहीं लगती।

जीवन की दिशा हमेशा परिस्थितियां तय नहीं करती, हमारे विचार और कर्म भी उसे दिशा देते हैं। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहे, आज ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन में भी उजाला बढ़े और किसी दूसरे के जीवन में भी थोड़ी सी खुशी आए।

कितनी सुंदर कल्पना है, हम जिस राह से गुजरे वहां उदासी कम और मुस्कान अधिक हो जाए। हमारी एक मीठी बात, एक छोटी सी मदद या एक सच्ची मुस्कान किसी के पूरे दिन को बेहतर बना दे।